सुभाषिनी सुमधुरभाषिनी।

सुप्रभात, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 जुलाई 2026। श्रोताओं उपस्थित हैं हम अपनी आज की सभा के कार्यक्रमों के साथ।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सबसे पहले सुनते हैं हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24,000 से 25,000 रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12,000 से 15,000 रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़

0: और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले कर रहे थे अपने दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए आज का चिंतन। विषय है कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक।
2: कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वेद परमात्मा को निराकार, निर्गुण, अखंड, अभेद और अदृश्य मानते हैं। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म तक शक्ति स्वरूप हैं। जैसे अग्नि में ताप, सूर्य में ज्योति, हवा में स्पर्श, जल में स्वाद हैं, उसी तरह प्रत्येक वस्तु में परमात्मा की शक्ति छिपी हुई है। सहज ढंग से कहा जाए तो जैसे बिजली के तार में विद्युत शक्ति छिपी है, स्विच ऑन करने पर कमरे में प्रकाश आ जाएगा, किंतु तार को काट कर देखा जाए तो वो शक्ति नहीं मिलेगी, पर छिपी हुई है। जैसे फूल में सुगंध है, परंतु फूल को नोचने पर गंध वायु में विकर्ण हो जाएगी, वो मिलेगी नहीं, पकड़ी ना जाएगी और ना छुई ही जाएगी। परमात्मा की शक्ति तर्क से नहीं बल्कि अनुभव से समझी जाएगी। कबीर ने परमात्मा के इस रहस्य को बहुत ही सहज ढंग से कह दिया है। तेरा साई तुझ में जस पहुपन में बास, कस्तूरी का मीरक ज्यों फिर सूंघे घास। उन्होंने वेदांत और उपनिषदों के गंभीर विचारों को सहज बोध गम्य बना दिया है। स्वामी अर्थात भगवान मनुष्य में उसी प्रकार वर्तमान है जिस प्रकार फूलों में सुगंध है। मनुष्य अपने में छिपी हुई परमात्मा शक्ति को ना समझकर इधर उधर भटकता है। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी गंध मिलती रहती है, किंतु मृग उसे ना समझकर इधर उधर भटकता रहता है, घास सूंघता रहता है। ठीक वैसे ही मनुष्य अपनी परमात्मा शक्ति को ना समझकर जगह जगह भटकता रहता है। परमात्मा तो हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं कि मुंह को कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान के विषय में कहा जा सकता है कि भगवान शब्द में क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर समाहित है। भा से भूमि तत्व, गा से गगन तत्व, वा से वायु तत्व, वा के साथ के आ से अग्नि तत्व और ना से नीर तत्व, अर्थात इन पांचों की शक्ति ही परमात्मा की शक्ति है, जो अखंड मंडलाकार विश्व मंडल में व्याप्त है। वही हम में, तुम में, खड़ग खंड में है। प्राणी का शरीर पांचों तत्व

0: से बना है। शरीर के नष्ट होने पर ये पांचों तत्व उन्हीं पांचों तत्वों में विलीन हो जाते हैं। इसे कबीर ने इस रूप में व्यक्त किया है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कबीर पूरे विश्व में परमात्मा की लाली देखते हैं और कहते हैं कि मेरे लाल की लाली अर्थात परमात्मा की शक्ति चारों ओर व्याप्त है। मैं जिधर देखता हूँ उधर उसकी लाली दिखाई देती है। उसको देखने के लिए जाने पर कबीर की आत्मा भी लाल हो जाती है। इसी भाव को वे दूसरी साखी में यूं प्रकट करते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, फुटा कुंभ जल जल ही समाना, एतत काहु ज्ञानी। इस साखी में उन्होंने भगवान शरीर को कुंभ माना है, उसमें वर्तमान जीवात्मा की शक्ति को जल बताया है, अखंड विश्व में व्याप्त परमात्मा की अनंत शक्ति को महासमुद्र का जल माना है, जिसमें मनुष्य का शरीर रूपी घट है और उसमें उसी समुद्र का जल भरा हुआ है। जब घट फूट जाएगा तो घट का जल समुद्र के जल में मिल जाएगा। ऐसे ही मनुष्य के शरीर से जब जीवात्मा निकल जाती है तो जीवात्मा की शक्ति परमात्मा शक्ति में विलीन हो जाती है, एवं शरीर के पांचों तत्व विभिन्न रूपों में पांचों तत्वों में मिल जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान विभिन्न ढंग से जिन भावों की व्याख्या करते हैं उन्हें कबीरदास जी ने बहुत सहज और स्वाभाविक ढंग से प्रकट किया है। वस्तुतः ज्ञानी लोग पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर परमात्मा के रहस्य को जानने और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कबीर अपने अनंत साधना और चिंतन मनन से प्राप्त अनुभव के आधार पर परमात्मा के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हैं। इसलिए पुस्तकीय ज्ञान वाले पंडितों से कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी। वे ये भी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगपुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। कबीर के विचार से पंडित वही है जिसने प्रेम के ढाई अक्षर को पढ़ा है। कबीर का प्रेम भौतिक सुख शांति के लिए सांसारिक प्रेम नहीं है। कबीर का प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रेम है, जो आध्यात्मिक है, परलौकिक है। कबीर की आत्मा प्रियतमा है और परमात्मा प्रियतम है। वे अपने को राम की दुल्हनिया कहते हैं। परमात्मा के प्रेम की उसी सुर लहरी में सुर मिलाकर गा उठते हैं, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। परमात्मा प्रेम के रंग में रंग जाने पर फिर संसार का कोई महत्व ही नहीं। जब साधक साधना में सफल हो जाता है तो वो परमात्मा में विलीन हो जाता है।
1: ये था आज का चिंतन FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सभी सुनने वालों को रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला भजन कृष्ण भगवान को समर्पित, भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं जितनी मनमोहक हैं उतनी ही प्रेरणादायक भी। नटखट कान्हा की माखन चोरी की कथा आज भी जन जन के हृदय में आनंद और प्रेम का संचार करती है। जब माता यशोदा उन्हें माखन खाने के लिए डांटती हैं, तब बाल गोपाल अपनी भोली भाली मुस्कान के साथ कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो। इसी मधुर प्रसंग को बड़े ही भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है लोकप्रिय भजन मैं नहीं माखन खायो। यह भजन श्री कृष्ण की निष्कपट बाल छवि, उनकी चंचलता और वात्सल्य रस का सुंदर चित्रण करता है। आइए भक्ति और आनंद के इसी मधुर वातावरण में डूबते हैं और सुनते हैं यह मनभावन भजन अनूप चलोटा की आवाज में।

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने, और जिसके घर माखन चोरी होती वो गोपी आ जाती शिकायत करने यशोदा के पास कि देखो तुम्हारे बेटे ने हमारे घर बहुत नुकसान किया, बड़ा उपद्रव किया। यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, पूछती है सब क्या करके आए, देखो सब शिकायत करने आई है। और कन्हैया बड़े भोलेपन से कहते थे मां मत सुनना सब झूठी, ये तो सब बहाना बना के आई है मुझे देखने, और बात समाप्त हो जाती। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में मां अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या, अचानक पूछा था। तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया,

मां ने देख लिया, दोनों जानते हैं माखन खाया, मुख से निकल गया मैं नहीं माखन खाया। कन्हैया ने कहा मुख से निकल गया तो क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तर्क दिए, मां को ऐसा समझाया कि अंत में मां ने कह दिया हाँ बेटा

0: शिवनंदन पांडे गरीब के गाय इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोक रंग यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता के तहत आइए सुनते हैं मैमूर सुल्तान से ली गई भेंट वार्ता का पुनः प्रसारण, जो हमें जानकारी देंगे फाइलेरिया बीमारी के कारण लक्षण एवं बचाव के बारे में। इनसे बातचीत कर रहे हैं परमेंद्र कुमार मिश्रा।
1: फाइलेरिया के लिए कई प्रयास सरकार की ओर से की जा रही है और इसके साथ साथ कई संस्थान भी इस ओर अग्रसर हैं। आज बातचीत करते हैं वेक्टर जनित रोग के सलाहकार मैमूर सुल्तान जी से। सर आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से नमस्कार।
2: नमस्कार सर, मैं वीवीडी सलाहकार हजारीबाग का वेक्टर बोन डिजीज देखते हैं, जिसमें मेरे यहाँ 5 बीमारी, झारखंड में 6 बीमारी है लेकिन हजारीबाग में 5 बीमारी है, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजा, जापान इंसेफेलाइटिस, सारा बीमारी वेक्टर बोन डिजीज से आता है जो मच्छर के काटने से ही होता है। और फाइलेरिया एक बहुत जानलेवा बीमारी है जो क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर के काटने से होता है। क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर जो है अक्सर वो गंदा पानी में ही पनपता है और ये मानव को ज्यादा पसंद करता है काटना, इसलिए कि इसको अंडा देना जरूरी पड़ता है। और ये क्यूलेक्स मच्छर जो मानव को काटता है तो उसके शरीर में जो

0: पैरासाइट छोड़ता है, माइक्रोफेलेरिया जिसको हम लोग कहते हैं, उस माइक्रोफेलेरिया से हम लोग को एक बीमारी आता है जिसको हाथी पांव हम लोग बोलते हैं, और उसमें हाइड्रोसिल भी फेलेरिया के ही लक्षण है। हाथी पांव बीमारी जो हम लोग अक्सर गांव में देखते हैं, जो हाथी के तरह पैर हो जाता है पूरा फूल के, वो कभी भी ठीक नहीं होता है, वो लाइलाज बीमारी है, वो कभी ठीक नहीं होगा।
1: ठीक होने वाला बीमारी नहीं है?
0: नहीं सर, कभी ठीक होने वाला बीमारी नहीं है। फेलेरिया का जो कीड़ा है बिचोरे बैनक्रप्टी, वो एक वर्म है, कृमि है, जो शरीर के चार से शुरू में 4-5 साल तक इसका कोई लक्षण नहीं आता। मच्छर जब काटता है, खून चूसता है, तो मच्छर के मुंह में उसका पैरासाइट रहता है, लार्वा रहता है, और वो लार्वा जो है आपका L3 लार्वा रहता है, वो लार्वा जब मच्छर ब्लड चूसता है तो उस क्रम में उसका मुंह में इतना लार्वा रहता है, ब्लड चूसने के क्रम में कई लार्वा को छोड़ देता है शरीर चमड़े पर, स्किन पर, और जहां भी उसको स्किन में जहां छेद मिलता है तो उस स्किन से प्रवेश कर जाता है। इसीलिए एक्सीडेंटली केस है, बहुत कम संख्या में होता है।
1: ये ना हो इसके लिए क्या कुछ किया?
0: हाँ, ना हो इसके लिए भारत सरकार के तरफ से झारखंड में 2 बार इसका फेलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलता है, एक 10 अगस्त से और एक 10 फरवरी से। 10 अगस्त से 9 जिला चलता है झारखंड में, और 10 फरवरी से 14 जिला चलता है। तो हजारीबाग जिला है, 10 अगस्त से हम लोग प्रोग्राम कराते हैं, 10 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक 15 दिन का प्रोग्राम, जिसमें पब्लिक को जागरूकता करना है, जन समुदाय को, अदर डिपार्टमेंट से हम लोग मीटिंग करते हैं DC साहब से, और जो भी यहाँ के लोकल पॉलिटिकल है, जो भी आपका पदाधिकारी है, सबसे हम लोग बैठक करने के बाद आम जनता को हम लोग मैसेज देते हैं कि 10 तारीख से जो दवा खिलाया जाएगा उसमें DEC, डाइथाइल कार्बोमाजिन, एल्बेंडाजोल, और हजारीबाग जिला जो है आइवरमेटिन टेबलेट पिछले 2 साल से जुड़ा गया है, जो उसको हम लोग MDA IDA के नाम से जानते हैं, ट्रिपल ड्रग थेरेपी। ये दवाई साल में एक बार सेवन करने से शरीर में जो माइक्रोफेलेरिया का जो जीवाणु रहता है, जो 10 साल के एज के रहते हैं शुरू का, वो मर जाते हैं, एक खुराक दवाई से मर जाते हैं। और जिनको फेलेरिया हो जाता है और 10 साल से 15 साल का एज चला जाता है, वो फिर कभी ठीक नहीं होता है।
1: सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे आप जो बताए कि इसके लिए जो अगस्त में जो घर घर जाकर सहिया दीदी जो टेबलेट देती हैं, या जो हमारे गांव में खास करके जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां पर लोग आकर के उस समय पर दवा लें, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएं कि लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि मैं दवा क्यों लूंगा, या कहीं से कुछ नुकसान तो नहीं?
0: हाँ, पब्लिक का थोड़ा सा अवेयरनेस का कमी रहता है, अवेयरनेस का कमी के कारण आदमी सोचता है कि जब हम स्वस्थ है तो फिर हम ये दवाई क्यों खाएं। फेलेरिया ऐसा ही एक बीमारी है जिसका शुरू का 5 से 7 साल के में लक्षण नहीं आता है, शुरू में लक्षण नहीं आता है, हम बता नहीं सकते हैं कि मेरे शरीर में माइक्रोफेलेरिया का कीड़ा है कि नहीं है। और अगर जब तक हम माइक्रोफेलेरिया का कीड़ा का प्रमाण आता है, लक्षण आता है, पैर फूलना चालू होता है, तब तक मेरा पास समय खत्म हो जाता है, तो देर हो चुका है, उस समय तक कृमि जो है एडल्ट वर्म बन जाता है, और शरीर का जहां भी लिम्फ नोड मिलता है वो लिम्फ नोड में जाके वो अपना बैठ जाते हैं और वहां पर स्वेलिंग चालू कर देता है, जिसके चलते पैर फूलता है। तो शुरू में जब हम लोग का लक्षण नहीं पता चलता है तो उस शुरू में ही हम दवाई अगर खा लेते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। ये दवाई इतना सेफ दवाई है, भारत सरकार से अप्रूव दवाई है, WHO से अप्रूव दवाई है, किसी भी तरह के इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी साइड इफेक्ट नहीं है।
1: जैसे जो मधुमेह या जो दूसरे भी बीमारी से ग्रसित है, तो जी भी क्या इस दवा को
0: जी जी इसमें सिर्फ अति गंभीर बीमारी जो बेडलिम्स हो गया है, बेड में गिर गया है, उसको छोड़ के और गर्भवती माँ और 2 साल के बच्चे को छोड़ के सारा आदमी खा सकते हैं। मामूली सर, आज के जमाने में शुगर और डायबिटीज जो हो गया और BP हो गया, ये सब कॉमन बीमारी होगा सबके, लेकिन सबको ही खाते हैं और सबको खाना है। इवन जो माने लैक्टेट मदर है, जो 1 सप्ताह के बाद भी वो दवा खा सकते हैं,
1: जो स्तनपान करा रहे हैं,
0: हाँ स्तनपान करा रहे हैं, वो भी 1 सप्ताह के बाद 15 दिन के बाद वो भी दवा खा सकते हैं, किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता है उसमें, और ना ही कोई साइड इफेक्ट, बहुत ही सुरक्षित दवाई है। और ये हम लोग पूरा जन समुदाय में खाना है, और जन समुदाय खाते भी हैं, और जब हम लोग इसका उद्घाटन करते हैं तो उसमें हम लोग डीसी महोदय साहब खाके खुद स्वयं खाके उद्घाटन करते हैं ताकि पब्लिक के मैसेज जाए, जागरूक हो, दवाई खाए। और हम लोग सारा पदाधिकारी वीडियो ब्लॉक लेवल में वीडियो मुखिया से लेकर सीओ, इवन स्कूल का टीचर स्कूल स्कूल में बूथ लगवाते हैं, सारा आदमी खाए दवाई। क्या कि जितना भी स्वस्थ आदमी रहता है कोई हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि हम स्वस्थ है। फलेरिया का कीड़ा ही ऐसा है कि जिसको हम लोग खाने के बाद ही खत्म हो जाता है।
1: अच्छा, ये एक बात आप जैसा कि बताए कि अगर ये बीमारी ना हो इसके लिए समय पर दवा लेना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर किसी को फलेरिया हो गया हो तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए?
0: जिसको फलेरिया हो गया है, जैसे फलेरिया अगर हो गया, किसी को हाथी पांव हो गया, पैर फूल गया है, उसके लिए फिर कोई भी इलाज नहीं है, इसका लाइलाज बीमारी है, कोई दवाई नहीं है। हाइड्रोसिल भी एक फलेरिया है, ये भी फलेरिया की बीमारी सी है, तो हाइड्रोसिल का उपाय है कि ये ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा। और इसका ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट सदर हॉस्पिटल में होता है, उसके बाद आपका कहीं भी जितना भी हॉस्पिटल है पेरिफेरल में, मेरा ब्लॉक लेवल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां भी फ्री ऑपरेशन होता है, और सारा चीज टेस्ट भी फ्री हम लोग करवाते हैं हाइड्रोसिल ऑपरेशन के लिए। हाथी पाव का कोई इलाज नहीं है, उसका सिर्फ एक ही है कि हम लोग उसको रुद्र प्रबंधक एक माने सिस्टम है जिसको MMDP हम लोग कहते हैं, मोबिलिटी मैनेजमेंट डिसेबिलिटी प्रिवेंटेशन, जिसके तहत उनको कुछ हम लोग सामान देते हैं, टब मग सेवलन और टॉयल एंटीसेप्टिक क्रीम पाउडर, ताकि वो अपना जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए उसको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं और उसको पैर को साफ सुथरा रखने के लिए तरीका बताते हैं, जो प्रैक्टिकली उनको सामान देने के बाद करके दिखाते हैं और व्यायाम वगैरह बताते हैं ताकि उसका जीवन शैली अच्छा से गुजरे। और बैठने का तौर तरीका, पैर को जैसे जिसको लिम्फोडीमा पैर फूल गया, खड़ा कम रहे, एक कुर्सी में बैठते हैं तो दूसरा कुर्सी में बैठ

तरीका बताते हैं जो प्रैक्टिकली उनको सामान देने के बाद करके दिखाते हैं और व्यायाम वगैरह बताते हैं ताकि उसका जीवन शैली अच्छा से गुजरे। और बैठने का तौर तरीका, पैर को जैसे जिसको लिम्फोडीमा पैर पैर फूल गया वो खड़ा कम रहे, एक कुर्सी में बैठते हैं तो दूसरा कुर्सी में बैठ

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत। आइए सुनते हैं सोनू निगम के स्वर में ये गीत।

जिंदगी तू ही तो है, काश तुझे खबर होती ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर, कहां जाऊं तेरा पता भी तो नहीं।

सोनू निगम के गाये से गीत के साथ कार्यक्रम गीत संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। समाचार प्रभात एवं मॉर्निंग न्यूज के लिए हमारा अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: करके बचा है।
1: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने हुरमुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
3: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
2: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
4: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए से लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहां तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: नीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंडा जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदीघोष, ताड़ध्वज और देवविदालन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रांड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
4: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोनी के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि सम्पन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
5: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा IIT के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
6: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
2: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत। सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात मुक्त को हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ है महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जींद से ग्रीन क्रांति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी। ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज। टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। यूनियन कैबिनेट क्लियर्स 2 एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 25,000 करोड़ रुपीज फॉर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। Railway Ministry launches new beta version of IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. World famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings begins today at Puri in Odisha. US says it launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in Strait of Hormuz. In football, defending champions Argentina beat England 2-1 in second semi-final of FIFA World Cup to set up title clash with Spain. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and England to be played in Cardiff this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved two elevated highway projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved these projects to improve road connectivity and reduce congestion and travel time in Varanasi. The projects include a six-lane greenfield elevated corridor covering over 46 kilometers between National Highway 19 and Varanasi Ring Road on hybrid NUET model. It will be built at a total capital cost of over 14,400 crore rupees. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the other project is related to the development of around 43-kilometer long, 6-lane and 4-lane elevated corridor along Varuna River Bank in Varanasi City at a cost of around 11,000 crore rupees.
9: The project is a fully elevated 6-lane and 4-lane corridor along the Varuna River. It will have a total length of 43 kilometers with an estimated investment of 10,998 crore rupees and is expected to be completed in approximately 4 years. The fully elevated 6-lane corridor running alongside the Ganga River, it will span 46 kilometers and is estimated to be built at a cost of 14,448 crore rupees.
8: 448 crore rupees. The Union Cabinet also approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map.
9: Semicon 2 is built around six key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
8: The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees aimed at scaling up domestic mobile phone production, deepening local value addition and strengthening India's position as a global electronics manufacturing hub. The cabinet also gave a nod to two multi-tracking projects covering four districts across Odisha and Jharkhand, expanding the Indian Railways network by about 145 kilometers. It also approved the National Investment Policy for Urea 2026 for Atmanirbhar Bharat. The Railway Ministry has launched a new beta version of Indian Railway Catering and Tourism Corporation IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. The IRCTC has made four major improvements in this new beta version. First, it does not have unnecessary captchas, pop-ups, flashing graphics or other distracting elements. Second, passengers can view seat availability across all classes. Third, it offers a faster checkout process, significantly reducing the number of steps required to book tickets. And fourth, the website will now save passengers' details, making repeat bookings easier. The website can be accessed at www.irctc.co.in/e-ticket. Delhi's iconic Red Fort complex has been closed to the public till the 80th Independence Day celebrations on the 15th of August. An order in this regard has been issued by the Archaeological Survey of India, ASI, in view of the ongoing preparations for the Independence Day celebrations at the complex. A senior ASI official said that such orders are issued every year ahead of Independence Day. The first international flight service from Madhya Pradesh has been launched. Chief Minister Dr. Mohan Yadav flagged off the first direct flight from Indore to Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at EIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app. World famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings, elder brother Lord Balbhadra and younger sister Devi Subhadra, will begin today at Puri in Odisha. During the annual festival of Rath Yatra, Lord Jagannath and his two siblings give darshan to the public in the chariots and visit Gundicha Temple, revered as the maternal aunt's abode of Lord Jagannath. Lakhs of devotees from across the country and abroad have converged to witness the divine procession of the Holy Trinity. Our correspondent has filed this report.
10: Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. With the first rays of dawn illuminating the sacred Badadanda of Puri, an ocean of devotion is enveloping the pilgrim city as Lord Jagannath, Lord Balabhadra Devi Subhadra and Lord Sudarshan are embarking on their annual sojourn to the Sri Gundicha temple, revered as the maternal aunt abode of the sibling deities. Despite heavy rain lashing Puri since early morning, lakhs of devotees are remaining undeterred, patiently and anxiously waiting ceremonial Pahandi Vijay of the Holy Trinity to their respective chariots. The ceremonial Chera Pahara ritual will thereafter be performed by Gajapati Maharaja of Puri Divya Singh Deep atop the three magnificently adorned chariots Nandi Ghosa, Taladhaja and Devi Dalana before devotees begin pulling them along the grand road amid reverberating chants of Jai Jagannath. Prakash Das, Akashwani News, Puri.
8: In Jharkhand, the annual Rath Yatra is being celebrated across the state today with traditional fervor and devotion. More from our correspondent.
11: Religious rituals began early this morning at the historic Jagannathpur temple in Dhurwa, Ranchi. After the deities are ceremonially placed on the chariot in the afternoon, the Rath Yatra will commence for Mausi Bari at 5:01 p.m. The district administration has deployed extensive security arrangements, including CCTV surveillance and a large number of security personnel across the fairgrounds. Meanwhile, in Hazaribagh, ISKCON will conduct the Rath Yatra on a 40-foot technologically advanced chariot developed by the support of IIT experts, while a cultural troupe from Kolkata will present special performances. In Koti, the local subdivisional administration reviewed security arrangements yesterday for the historic Rath Mela in the Bundu Panchpargana region. Special traffic diversions have also been put in place at major Jagannath temples across the state. Mavish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
8: The 149th Rath Yatra of Lord Jagannath also commenced today in Gujarat from the 400-year-old Jagannath Temple in the Jamalpur area of Ahmedabad amid tight security. Devotees in large numbers have thronged the temple premises to catch a glimpse of the deity. As per the century-old tradition, the annual Rath Yatra is held on the occasion of Ashadh Shukla Dwitiya, the second day of the bright half of the Ashadh month. More from our correspondent.
12: In Ahmedabad, the century-old tradition of annual Rath Yatra of Lord Jagannath is being celebrated today with immense religious fervor and gaiety on the auspicious occasion of Ashadh Shukla Dwitiya. Earlier this morning, Union Home Minister Amit Shah participated in the Mangala Aarti at a historic Jagannath temple and sought blessings of the Almighty. Following this, Chief Minister Bhupendra Patel performed the symbolic Pahind Vidhi, cleansing of chariot route with a golden broom and officially flagged off the procession. The majestic chariot of Lord Jagannath, brother Balbhadra and sister Subhadra are moving along the traditional 16-kilometer route accompanied by dozens of akhadas, bhajan mandalis and vibrant folk dance troupes. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
8: President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah have extended greetings to countrymen on this sacred occasion of Jagannath Rath Yatra. President Murmu said, "This sacred union of the Lord and the devotees is an unparalleled and deeply emotional moment." Prime Minister Modi described the Rath Yatra as a radiant expression of India's timeless spiritual and cultural heritage. The Union Home Minister also said, "The world-famous Jagannath Rath Yatra is a symbol of unwavering faith, trust and devotion." In Kerala, the hill shrine of Sabarimala will be open today for the monthly pujas. The temple will be open for darshan from this evening until the 21st of this month. Pilgrims will be allowed entry only through the virtual queue system to avoid overcrowding. The United States has said that it has launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in the Strait of Hormuz. U.S. military said it completed a second wave of strikes on Iran yesterday that were aimed at degrading Tehran's ability to target vessels in the Strait of Hormuz. We have a report.
13: U.S. President Donald Trump is weighing options to expand the U.S. military operation to loosen Tehran's grip on the critical waterway. Air defenses were activated in Tehran and residents were awoken by a loud explosion. It came after Iran claimed it has struck U.S. military targets in the region, including in Bahrain and Kuwait. On the other hand, U.S. military said it has disabled an empty oil tanker sailing toward Kerg Island, an economic lifeline for Iran. It marks the first vessel disabled since the U.S. naval blockade went back into effect. Meanwhile, Iranian Foreign Ministry spokesperson said Tehran has no plans for negotiations with the U.S. With Vishal's report, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
8: And now moving on to the world of sports. In football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atalanta Stadium in USA to set up the title clash of the FIFA World Cup against Spain. The first half ended goalless, but Anthony Gordon scored the opening goal for England in the 55th minute. Argentina's Enzo Fernandez equalized in the 85th minute, and Lautaro Martinez struck in the 90th minute to complete a dramatic 2-1 comeback victory for Argentina. And in men's cricket, second one day international of the three-match series between India and England will be played at Sophia Gardens in Cardiff today. The match will start at 5:30 p.m. Indian time. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
14: Thank you, Anuja. All the dailies have noticed the India-UK historic FTA coming into effect, setting a new path, and also the cabinet clearing major projects pushing for semiconductor chips and mobile phone production. Iran threatens regional oil blockade over U.S. sanctions is a headline in the Hindu. Well, the paper quotes Iran saying oil and gas will either be for everyone or no one as U.S. claims waves of strikes. As the world-famous Rath Yatra in Puri begins today, President Draupadi Murmu in an op-ed in Hindustan Times has written about her childhood memory of prayers and hymns to Sri Jagannath. She has expressed her feelings, saying 13 festivals are also said to be celebrated during the 12 months of the year in Kshi Kshetra. But the splendor of Rath Yatra is unique and incomparable. And finally, under the headline, Power of Second Life, the Times of India writes about discarded X-ray sheets transformed into stylish dresses, orange peels creating fabric and for use for shoes refurbished for school children in Ladakh, showing India's journey towards sustainability. And with that, it's back to Anuja.
8: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet clears two elevated road projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. Railway Ministry launches new beta version of IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. World-famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings begins today at Puri in Odisha. U.S. says it launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in Strait of Hormuz. In football, defending champions Argentina beat England 2-1 in second semi-final of FIFA World Cup to set up title clash with Spain. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and England to be played in Cardiff this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
15: मॉर्निंग न्यूज अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं हमारे स्टूडियो की कड़ी में 8:30 हो रहे हैं दोस्तों ये वक्त है प्रादेशिक समाचार का
16: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य और ऐतिहासिक रथ यात्रा। अनुष्ठान शुरू। नेशनल मेडिकल कमीशन ने रिम्स में एमबीबीएस की 70 सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। चालू शैक्षणिक सत्र से रिम्स में अब 250 छात्रों का होगा नामांकन। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने खनन नियमों में बदलाव का मसौदा किया तैयार। नए नियमों में आधुनिकीकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर किया गया फोकस। मौसम विभाग ने आज से अगले 3 दिन तक मध्यम से भारी बारिश का जताया अनुमान। रांची समेत आसपास के जिलों के तापमान में आई गिरावट और 22वीं झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न। जैप 6 जमशेदपुर की टीम बनी ओवरऑल चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में आज भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य और ऐतिहासिक रथ यात्रा पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्य आयोजन राजधानी रांची के धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में हो रहा है और रथ यात्रा के अनुष्ठान शुरू हो गए हैं।
17: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। जिला प्रशासन ने पूरे मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरों और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा IIT के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। वहीं खूंटी के बुंडू पंचपरगना क्षेत्र के ऐतिहासिक रथ मेले की सुरक्षा का जायजा कल स्थानीय अनुमंडल प्रशासन ने लिया। इसके साथ ही सरायकेला, दुमका और जमशेदपुर सहित राज्य के सभी प्रमुख जगन्नाथ मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए विशेष ट्रैफिक रूट डायवर्जन लागू किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
16: नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने रिम्स में MBBS की 70 सीटें बढ़ा दी हैं। अब चालू शैक्षणिक सत्र से रिम्स में 250 छात्रों का दाखिला लिया जाएगा। गौरतलब है कि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग लंबे समय से रिम्स समेत राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS और PG सीटें बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा था। विभाग ने आयोग और केंद्र सरकार को सभी जरूरी प्रस्ताव, अनुपालन रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज भेजे थे। खान सुरक्षा महानिदेशालय DGMS ने खनन और तेल क्षेत्र के नियमों में बड़े बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। DGMS ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मूल रूप से नियमों में बदलाव का उद्देश्य खनन क्षेत्र में आधुनिकीकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही तकनीक और संचालन व्यवस्था को आधुनिक बनाना है।
18: देश में मेटल सेक्टर, कोयला खनन और तेल क्षेत्र के नियमों में DGMS 65 साल बाद अब बदलाव की तैयारी में है। इसके लिए अलग अलग विशेषज्ञ समितियां बनाई गई हैं, जिन्होंने प्रारंभिक प्रारूप तैयार कर लिया है। मूल रूप से नियमों में बदलाव का उद्देश्य खनन क्षेत्र में आधुनिकीकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। नए नियमों के तहत हर खदान में डिजिटल सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य होगा। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणाली और ड्रोन सर्वेक्षण व निरीक्षण जैसी तकनीक को भी बढ़ावा मिलेगा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
16: झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी कार्य पूरा होने के बावजूद 3 वर्षों तक संवेदक का भुगतान लंबित रखने पर राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित कर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। रांची मंडल के DRM KN सिंह ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान DRM ने अमृत भारत स्टेशन के तहत पुनर्विकसित मुरी और पिस्का रेलवे स्टेशन के 17 जुलाई को होने वाले उद्घाटन समारोह में शामिल होने का आमंत्रण पत्र दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X handle @AIR News Alerts। और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में लिपिक पे पदों पर नियुक्ति को लेकर विधि और वित्त विभाग से सहमति नहीं लेने के कारण कार्मिक विभाग ने विभिन्न विभागों के नियुक्ति संबंधी अधियाचनाएं लौटा दी हैं। गौरतलब है कि किसी भी विभाग को नियुक्ति के लिए विधि और वित्त विभाग की सहमति अनिवार्य होती है, जिसके बाद ही आयोग को अनुशंसा भेजी जाती है। धनबाद के नरसा में निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड विवाद को लेकर सांसद ढुल्लू महतो और विधायक अरूप चटर्जी ने कल अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा निकाली और शक्ति प्रदर्शन किया। सांसद श्री महतो ने विधायक अरूप चटर्जी पर विकास कार्यों में बाधा डालने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।
19: जो एलिवेटेड रोड बन रहा है, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना ही बोलेंगे, हाथ जोड़कर निशा देते हैं जनता से, जो रोका है या नहीं रोका है काम चालू होने को, उसके लोग भी कुछ बुलवाया गया कि हम लोग 8 साल 10 साल से मांग कर रहे हैं, तो भाई आप मांग कर रहे हैं और इधर रोक भी रहे, ये दोहरा चरित्र कैसे चलेगा। जबरदस्ती सरकार के विरोध में जुलूस और प्रदर्शन किया।
16: वहीं दूसरी ओर भाकपा माले विधायक अरूप चटर्जी ने एलिवेटेड रोड परियोजना में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया है।
20: वो अगर समझते हैं जो रोड पर हम लड़के हम फैसला कर ले तो गलत है। एलिवेटेड के ठेकेदार SNP कॉन्ट्रैक्ट एंटरप्राइज लिए थे, उससे जीत ने लिया, जीत एंटरप्राइज से उससे ये लोग लिया, जबरन हम लोग काम नहीं करने देंगे, यहाँ के लोगों की देखरेख में काम होगी।
16: खूंटी जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने रणनीति तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने पुलिस पदाधिकारियों को पुराने अपराधियों और आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए।
21: 100 कांड प्रतिवेदित हुए तो 120% हम लोगों की तरफ से निष्पादन किया गया। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक पूरा रोस्टर तैयार किया है उन सभी अपराधियों का जिनका आपराधिक इतिहास रहा है, मुख्यतः 17 CLA वाले जो एक्ट हैं उनके और जो NDPS वाले कांड हैं और जो आर्म्स एक्ट के केसेस हैं, उसमें जो भी क्रिमिनल्स रहे हैं जिनका आपराधिक इतिहास है उनके बारे में सभी प्रकार की डिटेल्स उनके पास, उनका आज के समय में क्या रोजगार है, वो लोग कार्य योजना बनाई है जिससे कि हम लोग खूंटी से अपराध और कम करने की दिशा में अग्रतर हों।
16: बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड पर दिखने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज रामगढ़, बोकारो, धनबाद, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश की चेतावनी दी है। रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश राय टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित 22वीं झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता सम्पन्न हुई। जमशेदपुर के JAP 6 की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। पुलिस महानिरीक्षक सुनील भास्कर ने खिलाड़ियों को अनुशासन, समर्पण और खेल भावना की सराहना की। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य की लंबित और प्रमुख सड़क परियोजनाओं को समय पर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के CM के निर्देश को प्रमुखता दी है। इसके अलावा हिंदुस्तान ने रिम्स में MBBS की सीटें 180 से बढ़ाकर 250 करने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने अवैध राशन कार्डधारियों पर लिखा है, CCL कर्मी और कार बंगले वाले खा रहे गरीबों का राशन। प्रभात खबर ने गुमला में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली पर लिखा है, धक्का मारने पर भी नहीं चली एम्बुलेंस, अस्पताल पहुंचने से पहले ही मां की गोद में बेटी ने दम तोड़ा। दैनिक जागरण ने राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों की तकनीकी व्यवस्था पर बदलाव की तैयारी पर लिखा है, झारखंड के सभी 9 इंजीनियरिंग कॉलेज अब कहलाएंगे BIT। और अंत में मुख्य समाचार। झारखंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य और ऐतिहासिक रथ यात्रा अनुष्ठान शुरू। नेशनल मेडिकल कमीशन ने रिम्स में MBBS की 70 सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। चालू शैक्षणिक सत्र से रिम्स में अब 250 छात्रों का होगा नामांकन। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने खनन नियमों में बदलाव का मसौदा किया तैयार। नए नियमों में आधुनिकीकरण और सुरक्षा को बढ़ावा बढ़ावा देने पर किया गया फोकस। मौसम विभाग ने आज से अगले तीन दिन तक मध्यम से भारी बारिश का जताया अनुमान। रांची समेत आसपास के जिलों के तापमान में आई गिरावट। और 22वीं झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्र खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न। जैप 6 जमशेदपुर की टीम बनी ओवरऑल चैंपियन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है काला पत्थर।

और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी। गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: कभी कभी सुनते हैं इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।

1942 ए लव स्टोरी। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गाना कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज में। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ। लीजिए सुनिए जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में जॉली LLB 2 फिल्म का गाना। जुनैद वसी हैं गीतकार और संगीतकार हैं चिरंतन भट्ट।

0: रही।
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपने पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई बाहों में खिली तनिया।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए नीति मोहन की आवाज में पद्मावत फिल्म का गाना। सिद्धार्थ गरिमा है गीतकार और संगीतकार हैं संजय लीला भंसाली।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म का गाना। चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सुनिधि चौहान, नीति मोहन और अरिजीत सिंह की आवाजों में चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गाना। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार विशाल शेखर।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया। और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
7: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
6: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की आवाजों में 102 नॉट आउट, इस फिल्म से अमिताभ भट्टाचार्य के हैं बोल और तर्ज अमिताभ बच्चन की।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

एफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हुआ था। कैटरीना हांगकांग में जन्मी है और उनका परिवार दुनिया के अलग अलग देशों में रहता आया है। आखिरकार उनका परिवार लंदन में बस गया, जहां कैटरीना ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद शुरू

एक फैशन शो में कैटरीना कैफ रैंप पर वॉक कर रही थी और उन पर नजर पड़ी फिल्मकार कैजाद गुस्ताद की, जो उन दिनों अपनी फिल्म बूम के लिए एक अभिनेत्री की तलाश में थे। बस यहां से शुरू हुआ कैटरीना कैफ का करियर। फिल्म बूम 2003 में आई थी। 2004 में कैटरीना कैफ ने एक तेलुगु फिल्म की मल्लीश्वरी, इस फिल्म ने खूब कामयाबी हासिल की और इसके बाद साल 2005 कैटरीना कैफ को मिली अपनी पहली कामयाबी। ये फिल्म थी मैंने प्यार क्यों किया।

कैटरीना कैफ के लिए अभिनय का ये रास्ता बहुत आसान नहीं रहा। हिंदी से बहुत ज्यादा वाकिफ वो थी नहीं, परवरिश लंदन में हुई थी, उच्चारण में बहुत ज्यादा ब्रिटिश लहजा था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैटरीना की शुरुआती फिल्मों में उनके संवादों की डबिंग की जाती थी, लेकिन कैटरीना ने बहुत मेहनत की और अपने रोल्स में जान

साल 2006 में कैटरीना कैफ ने अक्षय कुमार के साथ पहली बार काम किया। ये फिल्म थी निर्देशक राज कंवर की फिल्म हमको दीवाना कर गए। फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन आगे चलकर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आए, जैसे साल 2007 में नमस्ते लंदन।

इसके बाद फिल्म अपनी में कैटरीना कैफ एक सपोर्टिंग रोल में नजर आईं। इस फिल्म में वो डॉक्टर बनी थी। डेविड धवन की फिल्म आई पार्टनर, जिसमें कैटरीना कैफ का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था।

साल 2009 में कैटरीना कैफ ने कबीर खान की फिल्म न्यूयॉर्क में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ थे जॉन अब्राहम और नील नितिन मुकेश।

इसके बाद कैटरीना कैफ की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म आई, राजकुमार संतोषी की अजब प्रेम की गजब कहानी। ये फिल्म उस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में से एक

2010 में एक बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म आई जिसके ना चलने का कैटरीना कैफ को भी दुख है और इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों को भी। ये फिल्म थी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली 30 मार खां। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आई जोया अख्तर की फिल्म में। इस फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।

वो दौर था जब कैटरीना कैफ जो भी फिल्म करती वो कामयाबी की ऊंचाइयों को छूती। साल 2013 कैटरीना कैफ के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस साल आमिर खान के साथ वो नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म धूम।

साल 2016 में अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर में कैटरीना कैफ ने काम किया। यहाँ आपको बता दें, ये फिल्म चार्ल्स डिकिंस के मशहूर नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर आधारित थी। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आई सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म बार बार देखो में।

0: अभिनेत्री कैटरीना कैफ की अभिनय यात्रा जारी है। वो नजर आई साल 2017 में अली अब्बास जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है में। इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम था जोया सिंह राठौर। इसी साल आई वेलकम टू न्यूयॉर्क। साल 2018 में कैटरीना कैफ नजर आई विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में, जिसमें उनका किरदार था सुरैया का।
1: घर सुरैया जान के सर झुका के आए हो, दे

साल 2018 में ही आनंद रॉय की फिल्म में नजर आई, वो फिल्म थी जीरो। इस फिल्म में उनके हीरो थे शाहरुख खान। 2019 में सलमान खान के साथ नजर आई कैटरीना कैफ अली अब्बास जफर की फिल्म भारत में।

0: ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था अभिनेत्री कैटरीना कैफ पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन की प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो।

हेलो हजारीबाग, सभी को माधवी का नमस्कार जोहार। आप सभी श्रोताओं को रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह प्रेम, समानता, सेवा और मानवता का संदेश देने वाला एक महान पर्व है। इस दिन भगवान श्री जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथ पर विराजमान होकर अपने भक्तों के बीच निकलते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के द्वार तक पहुंचते हैं। कहा जाता है कि जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ, अर्थात पूरे संसार के स्वामी। इसलिए इस यात्रा में किसी जाति, वर्ग, भाषा या समुदाय का भेद नहीं होता। हर व्यक्ति एक ही भावना से रथ की रस्सी खींचता है और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करता है। रथ यात्रा की सबसे प्रसिद्ध परंपरा ओडिशा के पुरी धाम से जुड़ी है। वहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा तीन अलग अलग रथों पर सवार होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करते हैं। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य दृश्य के साक्षी बनते हैं। झारखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से समृद्ध हजारीबाग में भी रथ यात्रा का पर्व बड़े उत्साह एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन किए जाते हैं। पूरा वातावरण जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंज उठता है। बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी इस उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। रथ यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है। जैसे रथ आगे बढ़ता है, वैसे ही हमें भी प्रेम, सद्भाव, सेवा, करुणा और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और अपार खुशियां बनी रहे। हर विघ्न दूर हो और हर मनोकामना पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ सुनते हैं यशुदास की आवाज में अपने पराये फिल्म का ये गाना।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद के प्रसिद्ध सुविचार के साथ आज हम हैं हेलो हजारीबाग में। ज्ञान का प्रकाश ही मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालता है। इन्होंने कहा, शिक्षा वह सबसे शक्तिशाली साधन है जिससे समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। हमें अपने विचारों को स्वतंत्र रखना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र सोच ही प्रगति का आधार है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ करते हैं। धर्म का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, बांटना नहीं। एकता में ही राष्ट्र की वास्तविक शक्ति निहित है। मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक उसका अनुभव होता है। दोस्तों, अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा, राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सद्भाव और स्वतंत्र चिंतन के प्रबल समर्थक थे। उनके विचार आज भी शिक्षा और सामाजिक समरसता के संदर्भ में प्रेरणादायक माने जाते हैं। आइए उनके विचारों को समझें, आत्मसात करें और लाभ उठाएं। फिलहाल आइए मिलकर आनंद उठाते हैं एक गीत का। फिल्म का नाम है प्यासा सावन, आवाजें सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की है।

दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जीव की जिसका नाम सुनते ही अधिकांश लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस जीव से हम इतना डरते हैं, वही हमारी प्रकृति और पर्यावरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रहरी भी है। दोस्तों, आज विश्व सर्प दिवस है और हम बात कर रहे हैं सांपों के पर्यावरणीय महत्व एवं संरक्षण के बारे में। सांप पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों से मौजूद हैं और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। खेतों, जंगलों और घास के मैदान में रहने वाले सांप बड़ी संख्या में चूहों और अन्य छोटी जीवों का शिकार करते हैं। यदि सांप ना हो तो चूहों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है, जिससे किसानों की फसलें भारी नुकसान झेलेंगी और कई बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, यह जानना भी जरूरी है कि हमारे देश में पाए जाने वाले अधिकांश सांप विषैले नहीं होते। वे मनुष्यों पर बिना कारण हमला नहीं करते। आम तौर पर सांप तभी काटते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है या कोई उन्हें पकड़ने या मारने का प्रयास करता है। इसलिए यदि कहीं सांप दिखाई दे तो घबराने या मारने के बजाय सुरक्षित दूरी बनाए रखें और प्रशिक्षित सर्प रक्षक से संपर्क करें। सांप केवल खेतों के ही नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। वे खाद्य श्रृंखला का एक आवश्यक हिस्सा है। एक ओर वे छोटे जीवों की संख्या नियंत्रित करते हैं तो दूसरी ओर स्वयं कई पक्षियों, नेवले और अन्य वन्य जीवों का भोजन भी बनते हैं। इस प्रकार वे प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, सच पूछिए तो आज सांपों के सामने कई चुनौतियां हैं। जंगलों का लगातार घटता क्षेत्र, सड़क दुर्घटनाएं, प्रदूषण, अवैध शिकार और सबसे बड़ी समस्या अंधविश्वास तथा भय है। कई बार लोग केवल डर के कारण सांपों को देखते ही मार देते हैं। यह न केवल पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है बल्कि वन्य

जीव संरक्षण की भावना के विपरीत है। यदि हम वास्तव में प्रकृति की रक्षा करना चाहते हैं, तो सांपों के संरक्षण को भी उतना ही महत्व देना होगा। इसके लिए हमें कुछ सरल बातों का ध्यान रखना चाहिए। जंगलों और प्राकृतिक आवासों की रक्षा करें, अनावश्यक रूप से किसी भी सांप को नुकसान न पहुंचाएं, बच्चों और समाज में सही जानकारी फैलाएं, और यदि किसी घर या बस्ती में सांप आ जाए तो उसे सुरक्षित तरीके से बचाने के लिए संबंधित वन विभाग या प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम की सहायता लें। हजारीबाग और झारखंड के वन क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के सांप पाए जाते हैं जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की अमूल्य धरोहर हैं। इनका संरक्षण केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी।

0: बप्पीलाई दी तर्ज अनजान के बोल किशोर कुमार आशा भोसले के युगल सुनो में नमक हलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के कार्यक्रम में स्वागत है और साथ है नामता बहन देने से जोहार प्रणाम। और आज हमारे साथ है आयल हथीन वीरेंद्र भाई, तो तोहरो जोहार
1: जोहार नामता बहन। और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के कार्यक्रम में स्वागत हन, जोहार हन। और देखा कि आज हम जो भी चर्चा करबे खास करके किसान वाणी में खरीफ फसल के देखभाल और धान मक्का एवं दलहनी फसल के लिए मतलब कृषि संबंधित एक हम चर्चा करबे। एक अलावे कुछ जानकारी लेकर आवल है और जैसे इस सब आज हम चर्चा करबे।
0: एकदम सही कहला। और अब थर समय भी है कि धान और मक्का लगे के समय है, साथ ही दलहनी फसल लगे के समय है। तब खरीफ जो फसल लगो है इस समय का हो है ना कि मौसम में नमी और गर्मी के कारण, मतलब कभी अचानक से मतलब बारिश हो गए तो नमी हो गए, कभी है कि अगर बारिश होए से पहले वाला जो मौसम हो रहेगा कि कितना गर्म हो जाए, तो इस सब कारण से का हो है कि जो घास पात है वो बहुत तेजी से बढ़ो है और बहुत तेजी से बढ़ो है, तो एक में कहीं ना कहीं फसल के जो पढ़वार है वो दब जाए है। तो हम इनके करे के का है कि फसल के जब बुआई हम इन करो ही है, तो उकर बाद 20 से 30 दिन के भीतर हम इनके पहला जो निराई गुड़ाई है वो कर लिए के चाहिए।
1: अभी देखा कि आज के डेट में मकई या अरहर के खेती है कुछ तकनीक के चेंज करके किसान के लगवे के चाहिए, जैसे कि पहले भी इनका कर लिए कि बैल से जोताई करके जहां तहां अगर छीट छाट के लगा दे लिया, लेकिन अभी सबसे बढ़िया कि तू बेड बना ला। अब बेड बना के मकई से मकई की दूरी जो है पौधा से पौधा की दूरी लगभग तू 1.5 फीट के दूरी में एक एक पौधा तू गिरा सको है दाना, 1.5 फीट और 1.5 फीट चौड़ा पात रहते होकर। और इस तरह से अगर तू करके अगर खेती करो है तो एक में सबसे पहला फायदा का हुआ है कि हमारे बीज की संख्या कम लगे, यानी बीज कम लगे है। उकर बाद देखा कि एक में उत्पादन अधिक हुआ है। और अभी एक और तरीका हो कि जहाँ अगर तुम बार बार जैसे टमाटर वमाटर की खेती करे था उकर मक्का अरहर की खेती दोनों करा। मक्का अरहर की खेती कर इसका फायदा हुआ है कि जमीन उर्वरा शक्ति बरकरार रहे और एकदम कम पानी की फसल है, जैसे कि इंसान जैसा देखल जा लगल है। तो किसान से हम आग्रह करबे कि मौसम के इंतजार ना करते, जे भी तुहर एक मतलब 2 नंबर 3 नंबर खेत हो ओकर मकई की खेती तू अभी से सोच ला लगावे के, अरहर की खेती लगावा। कहीं कम पानी हल्का पानी भी हो तो उकर से उत्पादन हो जितो। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जब बेड बना के आदमी लगे थे तो उकर एक लाइन में मकई एक लाइन में अरहर तू लगावा तो एक बहुत बढ़िया तुहरा उत्पादन मिलतो और अच्छा एकर में वृद्धि भी हो है।
0: एकदम बड़ी बेस्ट बात बतैला वीरेंद्र भाई कि तरी से हमने कि दो को फसल एक साथ लगा के बहुत अच्छा मुनाफा ले सको ही है। और अब तर है कि मानसून के समय पर हम इनके ये भी ध्यान दिए के हैं कि हर फसल हम इनके जो है मानसून पर निर्भर रहो है।
1: हाँ।
0: लेकिन का हो है कि जरूरत से ज्यादा पानी बारिश अगर हो जाए है या फिर सुखाड़ जो हो जाए है, ये दोनों चीज नुकसान करो।
1: हाँ।
0: तो हम इनके का है कि उकरे हिसाब से अपन हम इनके तैयारी रखे के है, खेत में का है कि जल निकासी के जो है पूरा व्यवस्था रखे के चाहिए कि अगर बहुत ज्यादा जैसे बारिश हो गए भारी बारिश हो गए तो पानी जमे न खेत।
1: हाँ।
0: ओकरा निकालल जा सके, काहे कि पानी जमे से भी खेत जो फसल है वो खराब हो जाए।
1: हाँ।
0: और अगर ज्यादा लंबा समय तक पानी न पड़े तब तो फसल के फिर पानी चाहिए, तो उस समय हम इनके पानी के इंतजाम रखे के चाहिए कि फसल पे हम इन जीवन रक्षक सिंचाई कर सको ही। हाँ। है काहे कि जीवन रक्षक सिंचाई कर दिए से कहा है कि ओकर में जान पड़ जाते और फिर कुछ समय बाद जब बारिश होता है तो फिर वो ठीक हो जाते।
1: एकर अलावे देखा कि मक्का की खेती और अरहर की खेती में सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब भी खेती करिए बरसात के मौसम में हल्का सा ढलुआ रखिए ताकि अगर बाह ऊपर वाला पानी गिरे तो बह जाए, और ज्यादा ढलुआ ना हल्का ताकि वो पानी सब निकल जाए और जैसे अगर फिर अगर बीच बीच में अगर बांध दे तो पानी ऊपर में जम के रह जाए पटावे की जरूरत पड़े तब। तो ये सब

0: अगर छोटी छोटी बात की अगर हम इन ध्यान रखो ये तो हम इन अच्छा फसल से मतलब मुनाफा ले सको ये। एक अलावे जैसे कि हम इन अगर चर्चा करिए अभी धान के बारे में, तो धान के बारे में अगर हम इन चर्चा करिए तो धान में सबसे बड़ा बात क्या है कि अभी जो किसान धान के चुनाव करो थे इन साल मौसम के देखते हुए 110 दिन के ही वैरायटी के धान के चुनाव करके किसान के लगावे के चाहिए। और एक और हम बात बता दे चाहो जो खेत में अभी पानी लगल हो किसान को खेत में धान की रोपाई जरूर कर देवे के चाहिए, मौसम के इंतजार ना देखे के चाहिए। चूंकि पानी अगर लगल हो तो रोपता एक चलते कि अगर तू रोपा तो पानी धीरे धीरे खेत से खेत उतरते जो और सब खेत के धान के रोपाई वहां हो जितो। कुछ ऐसा खेत है कि जैसे सदाबहार पानी रहे सालों भर पानी रहे और कुछ हम लाभ ले सको ये।
1: एकदम सही कला और कार्यक्रम में हमें नागो भी बनल रहे अब धर जो है सुनाऊ है एगो लोकगीत।
0: हाँ सुनल जाए।

0: देख ला कि ये लोकगीत के बाद एक बार फिर से हम इन कार्यक्रम में हाजिर हुए। और अब तक जैसे कि बरसात शुरू हो गया है, वह बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं होले है, लेकिन अभी से हम इनके है कि जे बारिश के पानी है ओकरा बचा के रखे के बारे में सोचे के हैं। काहे कि जब हम इन सोचबे तबे जाके ओकर पर हम इन काम कर सको हिए। तो जल संरक्षण जो है कि मतलब जे बारिश के पानी के संघार के रखे के है, ई काम पर हम इनके ध्यान दिए के है। एकर में का है कि जैसे कि खुला मैदान या जे ढाल के तरफ पानी बहो है, वो पानी के या छत के जे पानी है ओकरा पाइप या नाली के जरिए हम इन अपन एक टंकी में जमा कर सको ही है। और ओकर से काम जैसे कि कला टंकी या फिर पोखर तो बना सको है, डोभा बना सको है। तो ओकर में का है कि जब पानी जे समय नए पड़ो है, उस समय हम इनके धान या दलहनी फसल जो लगल है ओकर में अगर हम इनके पानी के जरूरत पड़ो है तो वही पानी हम इन इस्तेमाल कर सको ही है। और ऐसे भी पानी हम इनके का करे कि छत के पानी जे कि घर के पास है, तो पानी के जे एक स्तर रहो है, लेयर रहो है, वो बनल रहे, ओकर लेल हम इनके का करे के कि अपन घर के पास एक सोख्ता जरूर बनाए के चाहिए, ताकि जे घर के छत के पानी जे गिरले है वो पानी माटी के भीतर जा सके। और माटी के भीतर जब उतना पानी जाते तब जे पानी के लेयर है आसपास के एरिया में वो बढ़िया से बनल रहते हैं।
1: देखा, पानी के संचयन करे के बहुत तरह से संरक्षण करे के बहुत उपाय है। सबसे पहले किसान के एक बात हमेशा हम कहल चाहे कि जैसे आज के समय में जो तकनीक रोटावेटर से हल से जो जोताई करो थी, वो मात्र 3 से 4 इंची का जोताई करो, नीचे थाली के परत बन जाए, और जैसे बारिश हो अधिक तो पानी सीधे बह जाए, जमीन में सोखे ना। तो किसान के हमेशा एक बात के हमेशा ध्यान रखे के चाहिए कि मिट्टी पलटे वाला हल से जरूर मिट्टी के साल में एक बार जरूर पलटावे के चाहिए। ओकर से कहा हुआ है कि जमीन में पानी सोखे के क्षमता ज्यादा हो, तो कैसे पानी के लेयर पहला बढ़ो, पानी और जमीन में नमी सबसे ज्यादा तुहरा देखे मिलते हो ऐसा स्थिति में। एक अलावे तू खेती में आर चीज हम तुरा बतावे चाहो कि अगर यदि तू खेती करे था तो वहां ड्रिप इरीगेशन मल्चिंग के माध्यम से अगर तू खेती करो हा, और मल्चिंग के माध्यम और ड्रिप से पानी पटो है, तो सबसे बड़ा बात है कि वाष्प होकर उड़े ना, बल्कि वो प्लास्टिक में वाष्प होकर फिर वहीं जमीन में रह जाए, ओकर से भी पानी के लेयर बनल रहे। अब बहुत ऐसा तरीका है कि जैसे घर में अगर हम पानी बह जाए, अगर हमारे यहाँ का पानी जो है ओकरा कोशिश करे चाहे पानी सॉकेट, यानी कि कम से कम घर में अगर देख लग कितना पानी गिरा उस हिसाब से तू 10 बाय 10 के भी सॉकेट बना सको है, और सॉकेट बना के पानी कोशिश करे वहीं सुखावे की कोशिश करा, तो ओकर से भी जल स्तर बढ़ हुआ है। लेकिन ओकर में एक बात के हमेशा ध्यान देख चाहिए कि वहाँ मतलब जहाँ अगर चापाकल बोरिंग हो वैसन जगह में सोखा ना बनाना चाहिए, जहाँ या पानी टंकी हो, यानी कि मतलब बाथरूम के टंकी जो हो ओकर में उस जगह सब देखते हुए आदमी के बनाना चाहिए। और दूसर चीज़ है कि अगर यदि तुहर बारी खेत में गढ़ा ढोड़ा थोड़ा बहुत हो तो ओकरा बांध दा, ओकर में पानी तो बचा सको है।
0: एकदम सही कहला। और अब हमें चलो ये कार्यक्रम में आगू है जानकारी लेके आ ले हिए कि एगो पशुपालक हथिन केशव गोप, जे कि काफ़ी बुजुर्ग हथिन और काफ़ी बढ़िया से पशुपालन के काम कर ले हथिन।
1: हाँ, तो इनकर

0: अनुभव के हमें सुनो ही और इनकर से बातचीत जे करते हम इंदने से उनका नाम हकन नहमता आप पर भी तो ये जानकारी भरल बात के सुनो ही और समझो ही।
1: किसान भाइयों हमारे साथ है एक पशुपालक केशव गोप जी जो कि हुड़हुड़ू के रहने वाले हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये जो पशुपालन का काम कर रही है कितने वर्षों से कर रहे हैं?
2: हम कर रहे हैं करीब करीब 15 साल का उम्र से।
1: अच्छा।
2: आज मेरा उम्र हो गया है 74-75 साल।
1: आपको बहुत सालों का अनुभव है पशुपालन के कार्य में। भी आपके पास कितना जानवर है?
2: हमारे पास है 12-13 को जानवर।
1: अच्छा। तो गाय जो रखे हुए कौन कौन से नस्ल की गाय हैं?
2: हमारे पास होस्टल फ्रीजियन भी है और बोगला क्रॉस में भी है, सही वाल में भी।
1: हाँ। तो ये पशुपालन के कार्य में कौन से नस्ल की गाय ज्यादा अच्छी होती है?
2: हमारे हजारीबाग झारखण्ड के इसी में कहिए तो होस्टल फ्रीजियन है और आपका क्रॉस में जो जर्सी होता है जिसको जोर्सी बोलते हैं।
1: हाँ।
2: तो हम लोग कैसा जानवर रखते हैं कि जरा बीमारी यहाँ कम हो।
1: अच्छा।
2: दूध थोड़ा कम करे। हाँ। लेकिन परेशानी से बचे।
1: हाँ।
2: ऐसा नस्ल से रखते हैं
1: जी।
2: और हर बीमारी का पकड़ने के लिए जब हमसे नहीं होता है तो फिर डॉक्टर से हम लोग के संबंध करे पड़ते हैं।
1: तो इसका रख रखाव के बारे में बताइए कि इसका रख रखाव कैसे करते हैं और साफ सफाई पर क्या ध्यान देते हैं, ये चीज आप बताइए।
2: जैसे रख रखाव के लिए इसको दोनों टाइम बढ़िया से खाना खिलाते हैं।
1: हाँ।
2: मौसम समझ करके छाया में रखते हैं, जब देखते हैं ठंडा तो धूप में निकालते हैं। तो वही अनुभव पर अपना हम लोग जैसे डॉक्टर लिखता है दवाई तो कुछ बीमारी को हम लोग तौलते हैं।
1: हाँ।
2: कि कौन सा दवाई पड़ा जो ये बीमारी ठीक हुआ।
1: अच्छा।
2: तो उसको दिमाग में रखते हैं।
1: हाँ।
2: तो अपने भी कर लेते हैं।
1: हाँ, ताकि अगर फिर कभी अगर उस तरह का बीमारी हो तो उसका इलाज खुद कर ले
2: कर लेते हैं
1: जी।
2: अगर हमसे नहीं कंट्रोल होता है तो फिर डॉक्टर से संबंधित
1: जी
2: समझ गए ना।
1: और पशु में जैसे देखते हैं कि मुंह में छाला पड़ जाता है, उसे खुर में घाव हो जाता है, तो इस तरह का समस्या अगर आता है जानवर में तो क्या करते हैं?
2: पहले था कि हम लोग इमली के पानी डालते थे मुंह में दिन में 3-4 बजे और उसके बाद मक्खन और फिटकरी दोनों चपोड़ देते थे, उसी से मुंह का छाला धीरे धीरे कबड़ भी जाता है, चिकना भी हो जाता है। खुर में हुआ, खुर में पहले था ये दवाई नहीं निकला था, उस समय हम लोग पिटोल डालते थे या तारपीन के तेल डालते थे। अब उसके जगह में निकल गया स्प्रे। तो वही खुर को धो करके स्प्रे मारते हैं दिन भर में 3-4 बजे 2 बजे कीड़ा नहीं हो।
1: अच्छा।
2: अगर कीड़ा हो जाने पर बहुत लंबा समय लग जाता है उस जख्म ठीक होने पर, नहीं अगर लगा कीड़ा तो तनी जल्दी आराम होता है। ऐसे वो बीमारी जान मारने वाला नहीं है लेकिन परेशान करने वाला। तो देखिए हम ही आपका बुखार लगेगा चाहे ज्यादा दिन तब तो कक होगा वही ना, खाना नहीं खिलाता है तो ऐसे इन लोग के भी वही गति हो जाता है। तो इस तरह से अनुभव रखना पड़ता है कि कौन जानवर कैसा है, मौसम को देखना पड़ता है कि जैसे गर्मी हुआ तो गर्मी में अगर देखते हैं कि ये लू तो नहीं लग गया इसको।
1: हाँ, हाँ। तो लू लगने का पहचान कैसे करते हैं?
2: करते हैं कि खाना वाना कमी कर देता है।
1: अच्छा।
2: ज्यादा सांस हफनी उफनी होवे लगता है गर्मी से।
1: हाँ।
2: समझ गए ना
1: जी।
2: तो उससे अनुभव लगाते हैं।
1: तो फिर उसका घरेलू उपाय के लिए क्या करते हैं?
2: घरेलू उपाय के लिए जैसे लू लग गया तो पुदीना
1: अच्छा
2: पीस करके गुड़ में शरबत बना करके उसको देते हैं।
1: अच्छा।
2: तो उससे कुछ कम हो जाता है।
1: तो ये तो आपका एक उपाय हो गया, और कुछ करते हैं क्या लू से बचाने के लिए?
2: लू से बचाने के लिए यही करते हैं कि पेड़ के छाया पर अधिकतर रखते हैं
1: जी।
2: तो उससे मरा जानवर को राहत मिलता है। खुला जगह में बांधते हैं कि हवा चल रहा है और ऊपर पेड़ के छाया मिल रहा है तो उससे बहुत राहत मिलता है, उससे जानवर ठीक रहता।
1: तो ये तो गर्मी की बात आपने की, और अगर बरसात के समय कैसे पशुओं को आप रखते हैं? क्योंकि उस समय तो सूखापन उन लोगों को चाहिए, तो कैसे देखभाल करते हैं?
2: देखिए बरसात में है कि दिन भर तो पानी में रहेगा चाहे कीचड़ में रहेगा, उसके लिए कोई चिंता नहीं।
1: अच्छा।
2: लेकिन

0: रात के समय में उसको सूखा जगह में जरूर बांधना है कि शांति से वो भोजन पत्र जो भी किया शांति से बैठेगी उठेगी पागुर करेगी तो स्वच्छ रहेगी। हाँ, अगर 24 घंटा वो कीचड़ में और पानी में रहेगा तो फिर उसकी तबीयत तो जरूर गड़बड़ाएगा और गड़बड़ाएगा तो फिर परेशानी बढ़ जाता है। फिर दवाई करो डॉक्टर करो फिर पैसा लगाओ, इसलिए अपना अनुभव लगाना पड़ता है।
1: बिल्कुल। और खाना में आप क्या देते हैं अपने जानवरों को?
0: खाना में ठेट में देते हैं हम लोग बिचाली का जो कुट्टी होता है वो खिलाते हैं, गेहूं का दर्रा, चना का दर्रा, सरसों का खल्ली, समझे ना, और गेहूं का चोकर। हाँ, बहुत सा लोग सुधा दाना खिलाता है लेकिन हम नहीं खिलाते
1: जी। और हरा चारा में?
0: हरा चारा में वही 1 घंटा किसी तरह खोल देते हैं, हरा चारा मिलता नहीं है और 1-2 घंटे जानवर को खोल देते हैं तो भटक करके थोड़ा मोड़ा वो अपने चारा वो हरा ले लेती है।
1: अगर नया जानवर आप लोग खरीदते हैं तो वो जानवर अच्छा है उसकी पहचान कैसे करते हैं?
0: उसका पहचान करते हैं, उसका नस्ल देखते हैं, उसका मुंह का चंचलाहट देखते हैं, थान बाट उसको देखते हैं कि कैसा थान का है, कैसा बाट है, कैसा धार है, कैसा पहनान है, उसी से तजुर्बा लगाते हैं कि ठीक है ये नहीं ठीक है। हाँ, ये 10 सर कर सकता है, 2 सर कर सकता है, 5 सर कर सकता है, ये अनुभव लगाते हैं हम लोग। हाँ।
1: और गाभिन गाय की देखभाल किस तरह से करते हैं?
0: गाभिन गाय को तो 6 महीना तो भगवान भरोसे रहता है, 6 महीना के बाद जब टाइम अथी हो जाता है तो उस पर तजुर्बा रखना पड़ता है कि मेरा गाय गाभिन है या नहीं। अगर गाय गाभिन है तो थोड़ा उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि इसको अगर अभी नहीं खिलाओगे तो फिर उस अगले बयान पर दूध नहीं करेगा, इसलिए उसको भोजन बढ़ा देते हैं।
1: अच्छा, तो भोजन बढ़ाते हैं तो कितना और क्या चारा देते हैं?
0: चारा वही देते हैं, चारा वही मिलता है जो आपको हम बताया।
1: अच्छा, वही गेहूं का दर्रा, कुट्टी, ये सब देते हैं ना। और छोटे जो बछड़े होते हैं, नवजात बछड़े, उसकी देखभाल किस तरह से?
0: उसका देखभाल कहिए तो जैसे पैदा हुआ उसको मुंह में धरा करके बच्चा माँ के साथ पिलाते हैं, उसकी हम लोग जैसे उसकी कोर्स है 2 बाट पीने का।
1: अच्छा।
0: और 2 बाट दूहने का, तो 3 महीना तक उसको पिलाते हैं, 3 महीना के बाद दूध कुछ कम करते हैं उसको।
1: अच्छा।
0: और भोजन यही दाना खल्ली चोकर उसको धरा देते हैं।
1: अच्छा।
0: बीच बीच में उसको टॉनिक वगैरह देते रहते हैं और महीना में 1 बाजी जोंक का दवाई देना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: करीब करीब मैंने कही साल भर
1: अपने अनुभव को साझा किया, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो देखा नमता भी कितना बढ़िया जानकारी दल तुमने, खास करके पशुपालन के मतलब गाय के कैसे रख रखाव करना, दुधारू गाय के है ना, और जो बच्चा अगर पेट में होकर कैसे सुरक्षित करना, ओकर बारे में भी बारीकी से चर्चा कर। सबसे बड़ा इनकर एक देखलियन का कि बीमारी के जानवर अगर हो जाए बीमार ओकरा इलाज के बारे में भी बहुत सा मतलब वो अपन तरीका से बतेलथिन है और ये बहुत अच्छा जानकारी दलथिन। इनका नाम केशव गोप और फिर हमने से जब बात कर लेते नमता परवीन।
3: एकदम सही कहला कि इतना बढ़िया से उनकर जो है अपन उम्र के हिसाब से तजुर्बा है काफी। हाँ। कि भाई कौन तरीके से बीमारी है और उकर बचाव हम इन कैसे कर सकते हैं। हाँ। बीमारी होए पर तो इलाज सब कोई करो है लेकिन हाँ। बीमारी न हो उकर लेल भी पहले से उपाय करे के चाहिए कि हम इनके साफ सफाई के ध्यान दिए के है, समय पर है अपन पशु के जो है चारा पानी सब दिए के है, ताजा दिए के है।
2: हाँ।
3: तो अगर हर चीज हम इन समय पे करिए, साफ सफाई के पूरा ध्यान रखिए तो हम इन बहुत अच्छा काम कर सको ये पशुपालन के क्षेत्र में।
2: तो देखा कि अभी बिना देर कुबेर कर ले आज के बाजार भाव के बारे में जानो ही है, खास कर जो हमारे हजारीबाग क्षेत्र में आज के बाजार है उकर बारे में हम इन चर्चा करबे और कुछ सब्जी के बाजार भाव के बारे में जानकारी किसान के दबन। तो देखा ना मता बहन, आज जैसे हो आलू, लाल आलू 18 से 20 रुपया प्रति किलो, सफ़ेद आलू 12 से 15 रुपया प्रति किलो हो और प्याज 30 से 35 रुपया प्रति किलो, फूल गोभी 50 से 70 रुपया किलो और देखा पत्ता गोभी 25 से 30 रुपया प्रति किलो हो
3: और वहीं पटल के भाव रहे 20 से 30।

0: रुपया किलो, भिंडी 20 से 25 रुपया किलो, नेनुआ 15 से 20 रुपया किलो, कद्दू 15 से 20 रुपया किलो और हरा मिर्चा 40 से 50 रुपया किलो।
1: और देखा कि शिमला मिर्च 70 से 80 रुपया किलो, गाजर 30 से 40 रुपया प्रति किलो, बीट 30 से 40 रुपया प्रति किलो, सेम 80 से 100 रुपया प्रति किलो, बीन 60 से 70 रुपया प्रति किलो।
0: और वहीं पे मुरैज के भाव रहले 15 से 20 रुपये प्रति किलो, और धनिया पत्ता रहले 150 से 200 रुपये किलो, अदरक 120 से 140 रुपये किलो, खीरा 25 से 30 रुपये किलो, टमाटर 35 से 40 रुपये किलो, लाल साग और पालक साग रहले 15 से 20 रुपये किलो। और आज के मौसम के जो जानकारी है वो भी हम इन बता दीजिए कि अधिकतम तापमान जो रहले वो 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो रहले 24 डिग्री सेल्सियस और आज के आर्द्रता रहले 80%।
1: और देखा कल के मौसम जो पूर्वानुमान मौसम 29 डिग्री सेल्सियस रहते हैं, और देखा कि मतलब अधिकतम और न्यूनतम जो है कम से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहते हैं। और देखा मौसम पूर्वानुमान हो कल के बादल छावल रहते हो, कहीं बूंदा बूंदी पानी के संभावना बनल हो
0: एकदम। और अब हम इन बात कर पे योजना के बारे में, जे कि मतलब सरकार देने से चलावल जा है हर तरह के योजना, तो ऐसे मतलब योजना में आज हम इन जे बात कर पे वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, जे कि भारत सरकार देने से किसान सभन के दियल जा है। यह प्राकृतिक आपदा हो गया है जैसे कि बाढ़ सूखा या फिर कीट या कोई रोग लग जाए है फसल में और फसल ओकर से खराब हो जाए है, काफी नुकसान हो जाए है, तो वैसन हालत में क्या है कि बीमा कराए से वित्तीय सहायता दियल जाए है किसान सभन के।
1: तो देखा कि एकर में सबसे पहला हो कि अगर हम फसल बीमा करावेल चाहो ये तो उकर कुछ दस्तावेज इस प्रकार से है। सबसे पहले कि जमीन के रसीद उकर वंशावली के साथ होना चाहिए, आधार कार्ड, बैंक के पासबुक के फोटो कॉपी, ये 4-5 दस्तावेज के साथ अपन बैंक में जेथिन या जहाँ पे बीमा हो है और बीमा केंद्र में जाके ओकरा बीमा कर दी। बीमा शुल्क देखा कि अगले साल 1 रुपया किसान के कट होले, अब इन साल सरकार का निर्धारित करो तो कर पर निर्भर करो, लेकिन उम्मीद है कि पर साल ही जैसन इन साल रहते। बीमा शुल्क किसान के हमेशा बीमा जरूर करावे के चाहिए, फसल के कोई भी फसल हो बीमा करावे से 2-3 लाभ हो। देखा इन साल या अगले साल अधिक बारिश भेले तो जहाँ खेत में फसल बह गए तो वहाँ ओकरा बीमा के भी पैसा मिलने है, आ कम बारिश में भी तुहरा बीमा करे लो तो ओकर पैसा मिलतो, कुछ न कुछ फायदा हो।
0: तब देख ले कि वह इतना बढ़िया, जब हम इनके फायदा है तो सरकार के हर योजना के बारे में हम इनके जागरूक होके जरूरी है। हाँ। और हम इन जागरूक जब होबे तबे जाके हम इन ओकरा लाभ उठा सको ही।
1: हाँ।
0: और अब कार्यक्रम से जाए के बेरा भी हो गया है, तो कार्यक्रम किसान वाणी से हमरा नहमता के
1: और वीरेंद्र के अनुमति दा जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:32 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम खेती बारी।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनने वाले सभी ग्रामीण भाई बहन के कार्यक्रम में स्वागत है और साथ है नाहमता बंदन से जोहार प्रणाम। और आज हमार साथ एक बार फिर से कार्यक्रम में हथिन वीरेंद्र भाई।
1: जोहार नाहमता बहन, कार्यक्रम खेती बाड़ी में सभी किसान भाई बहन के जोहार नमस्कार। और आज देखा कि हम इन खेती बाड़ी में बहुत कुछ लेकर आवल है, जैसे कि जैव विविधता में संरक्षण में सांपों की भूमिका, और बाद देखा जरूरी संदेश हो, फिर एक गीत नाथ हो और कुछ जानकारी लेकर आवल ही है। तो सबसे पहले आज हम इन जो चर्चा करवे ये हो 16 जो तारीख आज हो एक में सांप दिवस मनावल जा है, तो ओकर पर हम इनको चर्चा करवे
0: एकदम।
1: तो देखा कि खास करके सांप जो है किसान के एक तरफ से मित्र है, लेकिन कभी कभी ऐसा न हो कि आदमी डर भी जाए और कुछ कुछ बेसैला सांप हो जो काट दे जेकर शादी मर जाए, लेकिन सांप कैसे मित्र है से भी हम बात चर्चा करोगे। सबसे पहला कि अगर यदि तोहर खेत में चूहा की संख्या अगर सांप ना हो तो चूहा के कभी तू खत्म ना कर सको, इतना चूहा के संख्या खेत में बढ़ जाए। ओकर अलावा जैसे कि तू देखा खोखरा ये सब जो हो वो सब जे तोहर अथी मतलब पूरा छेद कर दो खेत के मेड़ के, तो सांप रहे से खोखरा भी वहाँ से भाग जाए। तो बहुत ऐसा चीज़ है सांप, जहाँ फायदे के भी काम करो है, किसान के एक तरफ से मित्र है लेकिन तो दुश्मन तो है ही, लेकिन हम तो ये ना कही एकदम ओकर नज़दीक रह जाए, नहीं सांप है वहाँ तो ओकर से दूरी बना के किसान के रहना चाहिए आम आदमी के, ताकि ओकर से बैठ सको थे। जैसे कुछ ऐसे सांप जैसे में कि तोहर धमना उमना सांप अगर खेत में हो तो विषैला सांप वो सब ना होतीन, तो वो सब अगर खेत में हो तो समझा कि चूहा के बहुत ही जल्दी हद से ज़्यादा वो चूहा के मतलब पर नुकसान पहुँचा होते हैं चूहा के, ताकि चूहा कम करे के बड़ा इस सब में अनुभव हो हन।
0: एकदम बड़ी बेस बात बताएला कि भाई चूहा मूसा जो है वो फसल के ख़राब कर दे है और ओकरा ख़त्म करे के इतना बढ़िया तरीका है। लेकिन हाँ ये भी बात ध्यान में रखे के है कि कोई भी जो जीव है या कला जानवर है वो ऐसे नुकसान न पहुँचाओ है। जब उखिन के खतरा के एक उम्मीद नज़र आओ कि भाई हमारा खतरा है तबे वो जाके हमला करो है, तो हम इनके ये चीज़ ध्यान रखे के है कि कभी भी अगर हम इन ऐसा सांप देखे लिए तो तुरंत से हड़बड़ा के न है, वहाँ से किनारे हट जाए के है, वो अपने किनारे चल जाता है। ओकरा मारे के कोशिश में का है कि वो भी तो अपना अपन बचाव करते ना।
1: हाँ।
0: तो इस सब चीज़ के ध्यान रखे के है। और सांप पकड़े वाला भी आजकल बहुत मिल जाए जो कि आसानी से सांप के पकड़ के और जंगल उंगल में जाके छोड़ दे हैं, तो हम इनके ई काम करे के चाहिए। और देखला कार्यक्रम में हम इन आगो भी बनल रहे, अब धर सुनाओ ही है एगो गीत और साथ है जरूरी संदेश,
1: तो सुनल जाए।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: तो देखला कि इतना खूबसूरत

0: गीत हम सुन लिए और साथ ही जरूरी संदेश भी सुन लिए। और अब तर जो अब हम इन बात करबे वो है बागवानी पे, काहे कि देखला अब धर के समय है कि जे भी फल बाग जे लगाए ले चाहो हतिन तो यही सबसे बढ़िया समय हो
1: हाँ,
0: है।
1: तो देखा कि बहुत सा ऐसा तो सुन ले हुआ कि रथ द्वितीया के समय में अगर यदि जे भी तू पेड़ पौधा लगाओ है, खास करके फलदार वृक्ष जैसे कि आम, अमरूद, कटहर, बड़हर, लीची है ना, एकर अलावे बांस, ये सब जे भी चीज तू लगाओ वो लग जाए। लगे के कारण का हो, जमीन पूर्ण रूप से नमी रहो अंदर से और ओकर में ऊपर से पानी पड़ते रहो, लगभग 1.5-2 महीना लगातार पानी पड़े, जेकर चलते पौधा लग जाए। तो किसान भाई बहन के ऐसा समय के कभी ना चुके के चाहिए, जिक्र अगर आम के पौधा लगावे को मन हो तो दो को जरूर आम के पौधा लगावा, इस समय में अगर लीची लगावा तो एक भी पौधा लगावा, जी इच्छा हो तो हरा फलदार वृक्ष लगावा। और आज के समय में कि फलदार वृक्ष से भी आमदनी करल जा लगल है, जिससे अभी तू रोड से जब क्रॉस करे थोड़ा कहीं कहीं देखा तो आम बेचे देखे थोड़ा, तो वहां देखा मालदा हो, लंगड़ा हो, दशहरी हो, तुहरा रोड में मिल जा हो, और वो समझा कि गाछ के पकल अगर आम मिलो हो तो कितना तुरा अच्छा हो। बाजारू आम में कार्बेट केमिकल दे के पकावल रो है, तो कोई भी अगर यदि गाछ से पकल चीज मिलो है तो अच्छा फायदेमंद सेहत के लिए रहो है, तो हमें जरूर पौधा लगावे के चाहिए इस समय।
0: एकदम फलदार पौधा लगावे से हमीन के मुनाफा तो है ही है,
1: हाँ
0: कर में साथ है हमीन अपन भी सेहत के ध्यान रख सको ही है। वो काहे काहे कि जितना पेड़ पौधा लगता है उतना ज़्यादा पर्यावरण सुरक्षित रहता है, और पर्यावरण सुरक्षित रहता है तो हमीन भी सुरक्षित रहे। तब देख ले कि आज ऐसने हमीन जानकारी भी लेके आए ही है अमरूद के खेती के बारे में,
1: हाँ हाँ
0: और बताए थथिन डॉक्टर नरेंद्र सिंह, और इनकर से बातचीत करत हथिन वीरेंद्र साहू।
1: तो इस जानकारी भरल बात के सुनो ये और समझो ये।
2: किसान मित्रों, हम लोग आज जो चर्चा करेंगे, खेती किसान में बहुत तरह का अंग होता है, जिसमें कि आज फलदार वृक्ष पौधों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे मुख्य तौर से। तो आज हम आपको लिए चलेंगे किसान भाइयों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड गौरियाकर्मा हजारीबाग में स्थित है, और आज जो हमारे साथ बात करेंगे एक वैज्ञानिक है डॉक्टर नरेंद्र सिंह। तो सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत है, जोहार है
3: जी। नमस्कार, जोहार
2: डॉक्टर साहब। हम जैसा कि जानते हैं हमारे यहाँ फलदार वृक्ष जैसे कि आम, अमरूद, कटहर, बड़हर, लीची, बहुत तरह के फलदार वृक्ष यहाँ देखा जाता है, बैर है, करोदा है, मतलब कहा जाए कि दायर तरह से झारखंड में हर तरह का फलदार वृक्ष लगभग सुटेबल भी है। लेकिन आज जिसमें हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो मार्केट में अमरूद जो देखते हैं आधा केजी बिकते हुए है ना, तो उस अमरूद के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो अमरूद जो होगा उसके लिए कैसा मिट्टी होना चाहिए, डॉक्टर साहब उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करें।
3: जो झारखंड की जो जलवायु और जो यहाँ की मृदा परिस्थिति है, और लगभग हर प्रकार के फल जो फलदार पौधे हैं उनकी वृद्धि और उनके उत्पादन के लिए उपयुक्त है, और अमरूद जो है यहाँ की जो जलवायु और जो मिट्टी की जो स्थिति है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। लेकिन जो इसमें हमारे जो इस क्षेत्र की जो जलवायु और मिट्टी है उसमें केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखने का ज़रूरत है कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर जो गोबर का पुराना खाद है वो पौधे का गड्ढा बनाते टाइम भी उसमें थोड़ा सा अच्छे से लगाया जाए, और प्रति वर्ष कम से कम 8 से 10 किलो उसको दिया जाए। यदि गोबर की खाद भी यदि किसान समुचित तरीके से डालता है तो उसकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व की हो सकती है।
2: तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 1 एकड़ में अमरूद का हम खेती करना चाहें यानी कि 100 डिसमिल में, तो उसमें कितना अमरूद का पौधा हमारा लगेगा और उसको हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि कुछ हवा का भी प्रकोप जो होता है पौधा अगर हम उल्टा तरीका से लगाए तो वो भी हमको नुकसान होता है, तो उससे हम कैसे बचेंगे और अच्छा मतलब पौधा हमारा कैसे लगेगा, और कुछ इसका प्रजाति के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे अमरूद।
3: तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्रजाति के बारे में बताना चाहूँगा। जो हमारे भारत की जो पुरानी जो किस्में हैं उसमें एक अलाहाबाद सफेदा और लखनऊ 49 जिसको सरदार गुआवा भी कहते हैं, सरदार अमरूद, ये दोनों बहुत ही प्रचलित थे जो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कई स्थानों पर उनको पहले से किसानों द्वारा लगाया जाता था। लेकिन उसके बाद कई हमारे जो सरकारी संस्थान हैं उनके द्वारा कई उन्नत किस्में भी विकसित की गई, जिसमें जो मुख्य जो लक्षण रहते हैं, एक तो उसका जो बीज है वो कम कठोरता वाला रहता है, और जो उसका गुदा है उसका कलर लाल या गुलाबी रंग का होता है, जिसको किसानों द्वारा और जो मार्केट में है अच्छा पसंद किया जाता है। तो इसके लिए जो मुख्य किस्में निकली हैं, एक अभी नई अपने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा एक पूसा आरुषि नाम से एक किस्म निकली है, और एक पूसा प्रतीक्षा निकली है। इसके अलावा बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर के द्वारा अर्का किरण, अर्का रश्मि, मृदुला, ये सारी किस्में विकसित की गई है। ये सारी जो किस्में हैं पूर्ववर्ती किस्मों के लगभग बराबर ही फल का साइज होता है, जो आप कह रहे हैं कि बड़ी साइज का जो अमरूद जो है बाजार में मिलता है, वो जो थाई जो किस्म है जो बाहर से विकसित करके हमारे देश में इंट्रोड्यूस की गई उनका है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितना दूरी रखें, कैसे उसका प्लांटिंग करना चाहिए। तो इस मामले में जो अमरूद की जितनी भी हमारे यहाँ पे किस्में उपलब्ध हैं उनके लिए करीब 3x6 मीटर, 3 मीटर × 6 मीटर या फिर 3x5 मीटर, ये दूरी बिल्कुल पर्याप्त है। इससे कम दूरी पे भी अमरूद को लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ समय 6 से 7 साल के बाद जब पौधा बड़ा होने लगता है तो एक दूसरे से में वो उलझना शुरू करता है, जिससे उसके अंदर बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता है और उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। तो मेरा ये सजेशन है किसान मित्रों के लिए कि 3x6 मीटर पे यदि पौधे को लगाया जाए, और लगाने का जो सबसे उपयुक्त समय है बारिश का समय है, और लगाने से करीब 1 महीना पहले किसान मित्र जो क्या करे, 3x3 फीट का गड्ढा तैयार करे, उसको 8 से 10 दिन धूप में खुला छोड़े, जिससे कि अंदर उसके अंदर के कीड़े जीवाणु जो दिया दीमक ये हैं ये सब मर जाएं। उसके बाद उसमें करीब 10 से 15 किलो गोबर की खाद और आधा किलो DAP इसको मिक्स करके उसको गड्ढे को भर दें, और जैसे ही बारिश हो उसके साथ उसको पौधे का रोपाई करें, तो एक बहुत ही अच्छा पौधा ग्रोथ करेगा। और मेरा ये मानना है कि उससे 50% तक आगे आने वाले पौधे की जो समस्या है वो भी समाधान हो जाएगा।
2: चाहते हैं अमरूद का लगाने का सही समय क्या होता है?
3: जी, अमरूद का लगाने का सही समय जैसे मैंने

0: ज़्यादा बढ़ेगा तो पौधे की जड़ों को स्ट्रेस के कारण शुरुआती अवस्था में वो झेल नहीं पाता है, सहनशीलता उसकी कम रहती है। तो हमारी तरफ से सलाह यही रहेगा कि बारिश का सीजन जो है वो हमेशा उपयुक्त रहता है।
1: यानी कि 15 जून के बाद से किसान अगर लगाना चाहे तो अच्छा होगा।
0: जी
1: हमारे
0: बिल्कुल,
1: यहाँ खासकर झारखंड में
0: जी बिल्कुल ठीक कहा।
1: अमरूद जब लगाने के बाद उसमें कितने दिनों बाद इसका पहला निकाई गुड़ाई किसान को करना चाहिए?
0: जी देखिए, अमरूद जैसे बाकी फलदार जो फसलें हैं उन्हीं की तरह ये बहुवर्षीय फसल है, तो इसमें ऐसा तो नहीं होता कि एक पर्टिकुलर किसी सीजन में, लेकिन जनरली बारिश का जो मौसम होता है उस टाइम घास वगैरह ज़्यादा रहती है, और जो घास वगैरह जो नुकसान करती है, जो सबसे अधिक नुकसान करने वाली घास होती है जो पौधे के जड़ के आसपास निकलती है, तो किसान को ये ध्यान में रखना चाहिए कि कम से कम बारिश का समय में और फरवरी मार्च के टाइम पे वसंत ऋतु में उसके जो जड़ के आसपास का जो है क्षेत्र उसको साफ करके वहाँ पे थाला अच्छे से बनाया जाए, जिससे वहाँ जो पौधे को समुचित पानी भी मिले और समय समय पे घास जो है वहाँ से निकला। उसके अलावा मल्चिंग, जिसको हम पलवार कहते हैं, पुरानी सूखी घास पत्तियाँ ये सब भी यदि जड़ों के पास में इकट्ठा की जाएगी तो जो खरपतवार है उसकी वृद्धि कम होगी और जो जमीन का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी अच्छा।
1: अभी कहीं कहीं अमरुद में आप देख कर रहे हैं किसान मतलब डायरेक्ट प्लास्टिक का मल्च कर दे रहे हैं, ड्रिप लगा दे रहे हैं, क्या उसमें ज्यादा सुटेबल होगा?
0: जी, जो प्लास्टिक मल्च है वो उसी तरीके से कार्य करता है जैसे हमारी जो सूखी पत्तों की ऑर्गेनिक पलवार काम करती है, लेकिन उसका जो थोड़ा जो कॉस्ट है वो ज़्यादा रहता है, और 3 साल 4 साल के बाद जब वो प्लास्टिक काम लायक नहीं रहता तो उसका निस्तारण भी एक कहीं कहीं समस्या रहती है। तो पूर्वी भारत के क्षेत्रों के लिए, चूंकि यहाँ पे धान का खेती होता है, गेहूं का खेती होता है, तो पुआल रहता है जिसका हम कहीं और जगह उपयोग नहीं कर पाए, खासकर धान का, उसको इसमें उपयोग किया जा सकता है, या फिर कोई सूखे पत्ते हैं तो उनका उपयोग इसमें किया जा सकता है।
1: अमरुद लगाने के बाद कितने दिनों बाद इसका उत्पादन शुरू हो जाता है?
0: अमरूद में पहली बार जो फूल आपको देखने को मिलेंगे वो लगभग दूसरे साल से भी देखने में मिल सकता है, लेकिन तीसरे चौथे साल से किसान उसमें से उत्पादन ले सकता है। हमारी किसानों को सलाह रहती है कि कम से कम 3 साल तक उसमें से उत्पादन न लिया जाए, जिससे कि पौधे की जड़ें कमजोर न रहे। एक इसमें विशेष बात मैं बताना चाहूँगा कि अमरूद के पौधे का ये गुण होता है कि यदि उसको लगातार थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी मिलता रहेगा तो उसमें पूरे साल भर थोड़े थोड़े फूल आते रहेंगे, कुछ फल लगते रहेंगे, और यदि बारिश के टाइम पे यदि वही फल पकने को तैयार है तो उसमें कीड़ा लग जाता है, जिसको हम फल मक्खी कहते हैं, लट का काम करती हो, तो ये समस्या बहुत मुख्य हो जाती है। तो इसीलिए किसानों को हम सलाह देते हैं कि 12 महीने लगातार थोड़े थोड़े फल आने से बेहतर है कि एक किसी पर्टिकुलर सीजन में अच्छा उत्पादन लिया जाए। तो इसके लिए जो हमारे यहाँ के जो क्षेत्र के लिए जो सुटेबल है कि बारिश के समय में, जैसे बारिश शुरू होता है तो बारिश के समय में नेचुरली उस टाइम अच्छा खासा है, अपने यहाँ पे वर्षापात रहता है, जल के संसाधन है, तो बारिश के टाइम पे यदि उसमें फूल आएंगे तो करीब 120-130 दिन के बाद वो पकता है। तो सर्दी के टाइम पे जो अमरूद पकता है उसमें फल मक्खी का जो प्रकोप है वो बहुत ही कम रहेगा, और उसमें जो किसानों को फल की साइज भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि पूरी जो ग्रोथ है फल की उस दौरान पौधे को समुचित पानी और जो पोषक तत्व है वो मिलते हैं। तो इसी के लिए, इसके लिए दो ही रिकमेंडेशन रहता है हमारा कि मई और अप्रैल 15 तारीख से मई तक उसका पानी बिल्कुल रोक दिया जाए पौधे के पत्ते पीले होने तक, और मई लास्ट में जून 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में उसको खाद दे के छोड़ दिया जाए, जैसे ही बारिश होगी उसमें नए फूल आना शुरू होंगे।
1: देखिए अमरूद में सबसे बड़ी चीज होता है कि प्रूनिंग जो बोलता है डाली कटिंग, वो कब किसान को करना चाहिए?
0: प्रूनिंग के बारे में ऐसा है कि अमरूद का एक गुण है कि इसमें जो फूल आता है वो जो नई जो डाली निकलती है, जो नई कोंपल निकलती है उसमें आता है, तो हर साल एक जो इसकी मुख्य डाली होती है वो अपना आगे की तरफ शीर्ष की तरफ प्रगति करती जाती है, और जो साइड से छोटी छोटी जो ब्रांचेस निकलती है वो लगभग सूखती जाती है। तो जो सीधा आगे जो ब्रांच बढ़ रही होती है मेन ब्रांच, उसको कंट्रोल करना जरूरी रहता है। कभी 25% 20% हम रिकमेंड करते हैं कि इसको बसंत ऋतु में उसको काटा जाए, जिससे कि उसकी जो नई ग्रोथ है अगली बारिश के सीजन में आ जाए।
1: अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हम जब हमारे जब उत्पादन होता है उसको हम कैसे पैकिंग करेंगे ताकि हमारा बाजार में अच्छा भाव।
0: अमरूद का कई जगह किसान कई बार क्या करते हैं कि एकदम पूरा पीला पड़ जाता है फल पौधे के ऊपर, तभी वो उसका हार्वेस्टिंग करते हैं, लेकिन अमरूद में यह है कि जैसे ही आपका गहरे हरे से एक फीका हरा रंग जैसे परिवर्तित होने लग जाता है और इसका भरपूर साइज ले लेता है, उस टाइम यदि किसान अमरूद को हार्वेस्ट करके और क्रेट में पैक कर लेगा तो मार्केट तक जाते जाते वो समुचित रूप से पीला रंग ले लेगा, तो उसको कुछ अच्छे से निस्तारण किया जा सकता है। उसके अलावा यदि 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे यदि उसका भंडारण किया जाए तो अधिक समय तक उसका भंडारण किया जाए।
1: युवा साथी को क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि वो किस तरह से, जैसे जो अभी बेरोजगार है वो फलदार वृक्ष कैसे आए, कैसे आए यहाँ।

0: से जुड़े हैं।
1: पूर्वी भारत की जो जलवायु और मैं कहूंगा कि जो भौगोलिक जो स्थिति है वो पठारी क्षेत्र है, तो जहाँ पे जल के जो संसाधन है वो बहुत ही कम है, जो इरिगेशन सिंचाई के संसाधन, क्योंकि बारिश के सीजन में मुख्यतः बारिश होता है। तो इसके लिए बहुवर्षीय फसलों जैसे अमरूद की खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है, क्योंकि अमरूद न केवल फ्रेश मार्केट में जाता है, यदि इसका प्रोसेसिंग सेक्टर को कैच किया जाए तो ये एक युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा नया सपना साकार करने के लिए अच्छा रास्ता हो सकता है। क्योंकि अमरूद का आपने देखा होगा जेली आता है मार्केट में, वो बहुत ही अच्छा सर्वोत्तम जेली बनता है। इसके अलावा भी अमरूद के कई प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है, लेकिन जो अमरूद का जेली इवन अमरूद का जूस भी आजकल डिब्बाबंद आता है मार्केट में, यदि इस सेक्टर को भी टैप किया जाए तो न केवल हमारा जो लोकल मार्केट है प्रोसेसिंग मार्केट को भी अच्छे से पकड़ा जाए।
0: तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: देखला ये हेल्थिन डॉक्टर नरेंद्र सिंह जे की बतेलथिन कि भाई कितना बढ़िया से अमरूद के खेती करल जा सको है। और इनकर से बातचीत करलथिन वीरेंद्र साहू। और अब हम इन जे बात कर पे वो है एकीकृत कृषि प्रणाली यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में। और ये बहुत जरूरी है आज के समय में। एकर में का है कि खेती के साथ साथ पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन, मछली पालन, बतख पालन, मतलब सब काम एक साथ करे के, काहे कि एकर से इनके फायदा है कि एक दूसर के जो वेस्टेज है वो काम आ जाए। अगर हम इन पशु पालो ही है तो उकर गोबर मिलो है, गोमूत्र है, उस सब के इस्तेमाल हम इन खाद के रूप में अपन खेत में इस्तेमाल कर सको ही है। और खेत से निकलल जे घास है या जे पौधा के डंठल उंठल हो है वो हम इन अपन पशु के चारा के रूप में दे सको कर सको है।
3: ये बहुत अच्छा बात तो बतलन हमता बहन की कोई भी चीज हम एक साथ में तीन चार गो कैसे कर सको ये खेती उकर बारे में। आप जैसे कि बहुत जगह तू देख लियो के अभी के समय में कि नीचे मछली पालल जा लगल ओकर ऊपर मुर्गी पालन करल जा है, और वो पानी के हर दो अढ़ाई महीना में ओकरा चेंज कर देते हैं ताकि ओकर से का हो है कि पानी जब नियार हो तो मछली के ग्रोथ भी हो है, और देखा पानी साफ सुथरा हो रहा है, और वो पानी जब जाए फसल है तो ओकर उत्पादन अधिक हो है, है ना। तो कुछ कुछ बात के अगर हम ध्यान दिए तो अधिक मुनाफा हम कमा सको ही है
2: एकदम। और हम इनके ये चीज है कि आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। और हम इनके लेके चले के चाहे चाहे दो तीन फसल एक साथ लगावे के है, या फसल मतलब खेती के साथ साथ पशुपालन के काम साथ में लेके चले के है। और अब देख रहा कि हम इनके जाए के समय भी हो गया है, तो कार्यक्रम खेती बाड़ी से हमारा नाहमता के
3: और वीरेंद्र के अनुमति दा जोहार।

खेती बाड़ी अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टेडियो घड़ी में इस वक्त शाम के 6 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नीलम कुमार। राजधानी रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। 15 दिनों के एकांतवास के बाद भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा ने भक्तों को दर्शन दिए, जिसके बाद आज शाम भव्य धर्म रथ को मौसीबाड़ी के लिए रवाना किया गया। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज पतरातू डैम परिसर में म्यूजिकल फाउंटेन और मयूराक्षी तथा कोयल नाम के दो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक रोशनलाल चौधरी और ममता देवी भी उपस्थित थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई द्वारा 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा लागू करने पर चिंता व्यक्त की है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न की जाए, क्योंकि इससे छात्रों पर अनावश्यक तनाव बढ़ता है। कोडरमा पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो वाहनों से 247 लीटर विदेशी शराब और 30 लीटर बियर बरामद की है। गुप्त बॉक्स में छिपाकर बिहार से लाई जा रही इस शराब की कीमत करीब 1,75,000 रुपए है। मौके से बिहार निवासी चार तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातीय क्षेत्र के कारण राज्य भर में मॉनसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसके प्रभाव से रांची, खूंटी, रामगढ़, लातेहार और बोकारो सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 72 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। राज्य में स्कूली खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू हो रहा है। इसके तहत पहली प्रतियोगिता 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट कल से 21 जुलाई तक रांची के खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में खेली जाएगी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय शाम के 6:02 हो रहे हैं। प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी।

0: कार्यक्रम युवावाणी सुन रहे तमाम युवा दोस्तों और श्रोताओं का स्वागत है। खैर मकदम है आप ही के इस कार्यक्रम में। आधे घंटे के इस दिलचस्प जानकारियों के कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं अली शब्बीर, कीजिए अभिवादन स्वीकार, नमस्कार। दोस्तों आज हम इस कार्यक्रम में आपके साथ रूबरू हो रहे हैं दो विशेष चर्चाओं के साथ। पहला ये कि मौजूदा वक्त में जहां साल नवयुवकों में नशे का जो चलन आम हुआ है, उस नशे का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभाव कितना गंभीर और खतरनाक है, किस कदर ये युवाओं को प्रभावित कर रहा है और इसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, इसकी बात करते हैं। दोस्तों नशा चाहे शराब, तंबाकू या ड्रग्स का हो, इसका सेवन व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। इसके कारण गंभीर बीमारियां, आर्थिक बर्बादी, रिश्तों में दरार और मानसिक तनाव जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दोस्तों नशे का असर जब अत्यधिक हो जाता है तो लीवर, सिरोसिस, किडनी में खराबी और फेफड़ों को भारी नुकसान पहुंचाता है। कोकीन और शराब जैसे नशे ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। शराब और अन्य नशीले पदार्थ के सेवन से मुंह, गले और फेफड़ों के कैंसर का भी खतरा रहता है। दोस्तों नशा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी घटा देता है, जिससे व्यक्ति बार बार बीमारियों की चपेट में आता है। दोस्तों इस पर हम मजीद चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल रुख बदलते हैं और आपको सुनवाते हैं एक खूबसूरत सा गीत, लेकिन गीत से पहले ये जरूरी संदेश।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?

0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, बात करते हैं नशे के मानसिक और भावनात्मक प्रभाव की। तो दोस्तों, ड्रग्स के इस्तेमाल से याददाश्त कमजोर होती है। डिप्रेशन, चिंता और सिज़ोफ्रेनिया जैसे गंभीर मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। नशे का आदि व्यक्ति चिड़चिड़ा, हिंसक और एकाग्रता खोने वाला बन जाता है। नशे की लत के कारण सारी कमाई नशे पर खर्च हो जाता है, जिससे घर की जमा पूंजी खत्म हो जाती है और नतीजतन व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। पारिवारिक रिश्ते टूटने लगते हैं। आए दिन घरेलू हिंसा और विवाद की स्थिति बनी रहती है। नशे के प्रभाव में किए गए अपराधों के कारण समाज में सम्मान खत्म हो जाता है और कानूनी समस्याएं भी पैदा होती हैं। इसके ओवरडोज से व्यक्ति कोमा में चला जाता है और अंततः उसकी मौत तक हो जाती है। दोस्तों, इस लत से बाहर निकलने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श और नशा मुक्ति केंद्र की मदद लेना सबसे सुरक्षित और सही विकल्प है। दोस्तों, रुख बदलते हैं और आपको सुनवाते हैं कि वार्ता। औरत हूं कोई सामान नहीं। वार्ताकार हैं साक्षी मिश्रा।
4: मैं साक्षी मिश्रा आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए एक वार्ता प्रस्तुत कर रही हूं, जिसका विषय है औरत हूं मैं कोई सामान नहीं। लड़की हो तुम लिहाज करो, लोग क्या सोचेंगे, आंसू पोछो थोड़ा तो लिहाज करो, दूसरे घर जाना है तुम्हें थोड़ा तो बर्दाश्त करो, पर लड़की को हर वक्त सामान की तरह आंकने वालों थोड़ा तुम भी तो लिहाज करो। क्या वो औरत है तो उसे जीने का अधिकार नहीं? महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, क्या द्रौपदी कोई वस्तु थी जो कभी पांडवों में बांट दी गई और कौरवों के पास जुए में हार दी गई? या रामायण में माँ सीता ने अपने पूरे निष्ठा से पत्नी धर्म निभाया, भगवान राम के साथ 14 वर्ष का वनवास बिताया, फिर भी सीता हरण के बाद अपने पवित्रता को सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा की मांग कर दी गई? क्या यह जायज था? क्यों एक लड़की को ही हर वक्त परीक्षा देनी पड़ती है? आज भी कुछ घरों में लड़की को बाहर पढ़ने या नौकरी करने क्यों नहीं भेजा जाता? आखिर बेटियों को बोझ क्यों समझा जाता है? क्यों बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है? क्यों समाज की सोच लड़की पर आकर रुक जाती है? कहते हैं बेटियां पराई होती हैं। जब तक बेटियां अपने माँ बाप के घर होती है, तब तक उसे ये समझाया जाता है कि तुम्हें तो पराए घर जाना है, और जब बेटी की शादी हो जाती है तो उसे ससुराल में ये समझाया जाता है ये तो पराए घर से आई है। क्या बेटियों का कोई घर नहीं? क्या पहचान है बेटी की? हमारे समाज में बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है, फिर वहीं कुछ घरों में उसी लक्ष्मी को दहेज प्रथा में जलाकर मार दिया जाता है। ये बर्ताव बेटी के साथ ही क्यों? आज भी कुछ ऐसे घर हैं जहां लड़की को शिक्षा देना पाप माना जाता है, लेकिन माँ सरस्वती भी नारी है जो ज्ञान की देवी है। फिर लड़की को शिक्षा देना पाप कैसे हुआ? शिक्षा पे पहला अधिकार तो नारी का ही हुआ। लड़की की शादी के लिए पहले लड़की का चरित्र देखा जाता है, लड़की कैसी है, कहीं उसमें कोई दाग तो नहीं। लेकिन लड़कों को क्यों नहीं देखा जाता? क्यों उनके चरित्र को परखा नहीं जाता? आखिर इतना भेदभाव क्यों? मानती हूँ अब हमारा समाज अधिकांश ये मानता है कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं, लेकिन कहीं न कहीं ये फर्क तो आ ही जाता है। शादी से पहले बेटी को ये समझाया जाता है कि वर्तमान में तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे माता पिता है और शादी के बाद तुम्हारे उस घर के माता पिता। क्या बेटियों की कोई इच्छा नहीं या कोई खुद की जिंदगी नहीं? आखिर औरत हूँ कोई सामान नहीं। जन्म लेते ही माँ अपनी बेटी के लिए शादी के गहने जुटाने लगती है, क्या सही है क्या गलत है ये समझाने लगती है। लड़की हो अपना खास ख्याल रखना और कुछ भी हो तो मुझे पहले आकर बताना। आखिर क्यों हर बात पर हम लड़कियों को ये एहसास दिलाया जाता है कि लड़की हो तो तुम कमजोर हो? क्या लड़कियां खुद की रक्षा नहीं कर सकती? मानती हूँ हमारे माता पिता हमारी चिंता करते हैं, लेकिन यही बात लड़कों को क्यों नहीं बताया जाता है? क्यों लड़कियों को कमजोर समझा जाता है? जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तब उस माँ से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता, फिर ये बर्ताव औरत के साथ ही क्यों? बचपन से ही तभी रूप तभी तो तभी व्यवहार के लिए टोटी जाती है। कहने को तो लड़कों के बराबर है आज, पर मौका मिलते ही इनके ऊपर रिश्तों का भार डालकर पीछे कर दिया जाता है। लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं, ये सिर्फ शब्दों में ही रह जाते हैं। अभी के युग में ही कुछ घरों में लड़की होना पाप माना

0: जाता है, लेकिन उन्हें कौन बताए कि बेटे तो भाग्य से होते हैं लेकिन बेटियां तो सौभाग्य से प्राप्त होती हैं। जिस घर में औरत अपने घर के लिए अपनी जिंदगी बदल लेती हैं, फिर भी उनकी कोई अपनी पहचान नहीं होती। आज भी कई ऐसी औरतें हैं जिन्हें दूसरे के हिसाब से चलना पड़ता है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दिया गया है। क्या भारतीय संस्कृति में ऐसा लिखा है कि एक औरत को उसकी मर्जी से जीने का कोई अधिकार नहीं? कुछ घरों में आज भी नारी का कोई सम्मान नहीं। शायद यही कारण है कि हमारा देश उन्नति नहीं कर पा रहा। गवर्नमेंट ने तो काफी सारे नियम कानून बनाए हैं और काफी सारे समानताओं के अधिकार दिए हैं, लेकिन जब तक मानसिक तौर पर वो सम्मान और अहमियत नहीं देंगे, तब तक हमारे देश का विकास कैसे संभव होगा? आखिर औरत इतना मजबूर क्यों है? खुद सारे दुनिया की जननी होकर वह अपने पहचान से दूर क्यों है? यूँ तो नारी पर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या वाकई में नारी को वो सम्मान दिया है? शादी के पहले तो लड़की को बहुत प्यार सम्मान मिलता है और उसके माता पिता बहुत धूमधाम से उन्हें विदा करते हैं, लेकिन क्या शादी के बाद भी वह लड़की उतनी ही खुश रहती है? क्या उन्हें उतनी ही आजादी मिल पाती है? क्यों सारे कर्तव्य लड़की को ही समझाए जाते हैं? आखिर औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। क्यों सारे नियम स्त्री के लिए ही बनाए जाते हैं? क्यों औरत की गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती? क्या पुरुषों का फर्ज सिर्फ पैसे कमाना है? अगर देखा जाए तो स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। स्त्री ही स्त्री को सारे नियम मानने को बाध्य करती है। ऐसे हमारा देश पुरुष प्रधान हो रही जब महिलाएं खुद स्वीकार कर लेंगी यही जिंदगी है, सदियों से चला आ रहा है। पुरुष सब कुछ है और स्त्री कुछ भी नहीं। आखिर औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। अंत में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ एक छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। सुख में सबके साथ होती हूँ, दुख में अकेली रह जाती हूँ। सुख में सबके साथ होती हूँ, दुख में अकेली रह जाती हूँ। सबके साथ खड़ी होती हूँ मैं, खुद अकेली रह जाती हूँ। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। लक्ष्मी का रूप मानी जाती हूँ, फिर दहेज की प्रथा में जला दी जाती हूँ। लक्ष्मी का रूप मानी जाती हूँ, फिर दहेज की प्रथा में जला दी जाती हूँ। सरस्वती का भी रूप मानी जाती हूँ, फिर भी शिक्षा से दूर कर दी जाती हूँ। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। दुनिया की नजरों में मैं कुदरत का करिश्मा कहलाती हूँ। दुनिया की नजरों में मैं कुदरत का करिश्मा कहलाती हूँ। परिचय किसी का मोहताज नहीं, खुद अपनी जुबानी कहती हूँ। महाभारत से रामायण में मैं अबला बन रह जाती हूँ। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। मैं वो भिक्षा हूँ पांच पांडवों की जो आपस में बांट ली जाती हूँ। मैं वो भिक्षा हूँ पांच पांडवों की जो आपस में बांट ली जाती हूँ। पुरुष प्रधान इन दुनिया में, फिर जुए में हार दी जाती हूँ। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। मैं वो सीता हूँ राम की जो रावण बन चुरा ले जाती हूँ। मैं वो सीता हूँ राम की जो रावण बन चुरा ले जाती हूँ। फिर वो अग्नि परीक्षा भी मैं हूँ जो माटी में समा दी जाती हूँ और आने वाले युगों में इतिहास बना दी जाती हूँ। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। हर घर घर में पूजी जाती हूँ मैं। हर घर घर में पूजी जाती हूँ मैं। पर कौन हूँ मैं? पर कौन हूँ मैं? क्यों ऐसी हूँ? खुद से ही प्रश्न करना चाहती हूँ। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। धन्यवाद।
1: दोस्तों आपने सुना वार्ता औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं। वार्ताकार थी साक्षी मिश्रा। दोस्तों हकीकतन औरत तो औरतों और महिलाओं को कुदरत ने मर्दों के हमदोष बनाया है। उसकी अहमियत भी उनके अलग अलग मकामात पर परिस्थितियों में भी वही हैं जो मर्दों के हैं, बल्कि किसी किसी जगह पर मर्दों से भी कहीं ज़्यादा है। सच तो यह है कि दोनों एक दूसरे के परस्पर और संपूरक हैं। दोस्तों अब थोड़ी चर्चा सड़क सुरक्षा और नागरिक जिम्मेदारियों की। तो दोस्तों सड़क सुरक्षा और एक सामूहिक नागरिक जिम्मेदारी है। नागरिकों के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें, गति सीमा का ध्यान रखें और दूसरों की सुरक्षा का सम्मान करें। दोस्तों ये सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि खुद की और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की अमूल्य जान बचाने के लिए जरूरी है। दोस्तों, सड़क सुरक्षा

नागरिक इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए यातायात नियमों का पालन करना नहायत जरूरी है। रेड लाइट जंप ना करना और हमेशा गति सीमा में गाड़ी चलानी चाहिए। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा ISI मार्क हेलमेट पहने और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। शराब या नशीली दवाओं का सेवन कर कभी भी वाहन न चलाएं। ये सड़क सुरक्षा के प्रति नागरिकों की बड़ी जिम्मेदारी है, इसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। इसके अपने और अपने साथ साथ घर परिवार व सामाजिक सुरक्षा की बड़ी जमानत है। दोस्तों, साथ ही ड्राइविंग करते समय फ़ोन पर बात हरगिज़ न करें, ऐसा करना घातक और बेहद ख़तरनाक हो सकता है। पैदल यात्रियों का सम्मान करना भी सभी नागरिकों की पहचान होती है, इसके लिए हमेशा ज़ेबरा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए और गाड़ी चलाते समय सड़क पार करते लोगों को प्राथमिकता देना भी नागरिकों का कर्तव्य है। इमरजेंसी वाहनों मसलन एम्बुलेंस दमकल की गाड़ियों को हमेशा आगे जाने देने के लिए रास्ता देना भी बड़ी जिम्मेदारी समझी जाती है। और एक बात और वो ये कि अपने वाहनों का रखरखाव सही रखें। पोल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस जैसे दस्तावेज हमेशा साथ रखने चाहिए। दोस्तों, ये और इस तरह की मजीद जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले कार्यक्रम में। आप उठाइए इस नगमे का लुत्फ और दीजिए हमें कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

युवानी। अभी आप सुन लेते हैं हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए, हम आपको सुनवा रहे हैं दिल है तुम्हारा। फिल्म का आवाजें हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत FM हजारीबाग से। प्रोग्राम का अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं आखिरी रास्ता फिल्म का। आवाजें हैं मोहम्मद अजीज और एस जानकी की।
2: Story, but everybody will sing with me.
3: Okay.
2: Ready? Come on. One, two, three, four.
3: Jump up.

अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों के गाए हुए फिल्म हम हैं राही प्यार के इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत ही समाप्त होता है।

फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त शाम के 6:55 हो चुके हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एवं जिले में आजकल। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के राज्य केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राज्य भर में आस्था और पारंपरिक उल्लास के साथ निकाली जा रही है भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। रांची में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने रथ खींचकर किया ऐतिहासिक महोत्सव का शुभारंभ। झारखंड के रेल यात्रियों को कल मिलेगी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: पिस्का, मुरी और विमलगढ़ रेलवे स्टेशनों का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। राज्य में SIR अभियान तेज, शहरी और युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए 18 और 20 जुलाई को सभी शहरी केंद्रों पर लगेंगे विशेष शिविर। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जेलों से बीमार और बुजुर्ग कैदियों की समय से पहले रिहाई की व्यापक नीति बनाने का दिया निर्देश। और नई दिल्ली के भारत टेक्स में झारखंड पेवेलियन की धूम, आधुनिक बांस स्टील उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए बने मुख्य आकर्षण। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज पूरे पारंपरिक उल्लास और श्रद्धा के साथ निकाली जा रही है। राजधानी रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। 15 दिनों के एकांतवास के बाद भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा ने भक्तों को दर्शन दिए, जिसके बाद आज शाम भव्य धर्म रथ को मौसीबाड़ी के लिए रवाना किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रथ खींचकर इस ऐतिहासिक महोत्सव की शुरुआत की। मौके पर मुख्यमंत्री ने समस्त राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी।
1: हर साल की तरह इस साल भी एक बड़ी भारी तैयारी और इतने बड़े संख्या में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं और इतने लोगों की आस्था और यहाँ लोगों की उपस्थिति स्पष्ट करता है कि इस मंदिर की दिव्यता, भव्यता और आकर्षण कितना बड़ा है।
0: हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा पहली बार भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु हरे कृष्णा महामंत्र पर झूमते नजर आए। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण देश के शीर्ष तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किया गया झारखंड का सबसे बड़ा हाइड्रोलिक रथ रहा, जिसे बिजली के तारों से बचाने के लिए रिमोट से 16 से 40 फीट तक छोटा बड़ा किया जा सकता है। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया।
2: हजारीबाग में ये रथ यात्रा इस्कॉन द्वारा फर्स्ट टाइम आयोजित किया जा रहा है और भक्त लोग काफी उत्साहित है, काफी मात्रा में भक्तों ने भाग लिया है, तहे दिल से ये रथ यात्रा को संपन्न करने में लगे हुए हैं। सब हरी बोल, जय जगन्नाथ। सड़कों पर एकदम रंगारंग कार्यक्रम है, सभी लोग कोई शंख दीप पुष्प से भगवान का अभिषेक हो रहा है और साइड साइड में भक्तों के लिए प्रसाद सेवा का आयोजन किया गया है।
0: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए गए झारखंड के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का कल लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची रेल मंडल के पिस्का, मुरी स्टेशन तथा चक्रधरपुर रेल मंडल के विमलगढ़ रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। चक्रधरपुर के सीनियर DCM आदित्य कुमार चौधरी ने बताया कि आधुनिक सुविधाओं से लैस विमलगढ़ रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के साथ ही क्षेत्र के यात्रियों को बेहतर रेल सेवाओं का लाभ मिलेगा।
3: 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो विमलगढ़ स्टेशन है उसका उद्घाटन करेंगे, वर्चुअली करेंगे। ऑल ओवर इंडिया करीब 75 स्टेशन का इनोग्रेशन होगा, जिसमें विमलगढ़ भी है। ये स्टेशन में जो अपग्रेड फैसिलिटीज है वो सारी सुविधाएं वहां प्रोवाइड की गई है। स्टेशन काफी अच्छा और सुंदर बनाया गया। इस प्रोग्राम करीब 15:30 बजे मतलब 3:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगा।
0: राज्य के पर्यटन मंत्री सुदेव्य कुमार ने आज पतरातू डैम परिसर में म्यूजिकल फाउंटेन और मयूराक्षी तथा कोयल नाम के 2 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक रोशनलाल चौधरी और ममता देवी भी उपस्थित थे। मंत्री ने बताया कि इन नई सुविधाओं से पर्यटक अब झील में तैरते हुए रेस्टोरेंट का लुत्फ उठा सकेंगे।
4: 2 सौगातें पतरातू पर्यटन को मिली हैं, पहला म्यूजिकल फाउंटेन और दूसरा फ्लोटिंग 2 रेस्टोरेंट्स। पतरातू आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का यह केंद्र बनेगा। 45 मिनट 50 मिनट की उस राइड में वो स्नैक्स के साथ पतरातू की झील का आनंद ले सकेंगे और म्यूजिकल फाउंटेन जो शाम को चलेगा तो वो भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक केंद्र होगा।
0: राज्य में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत 18 और 20 जुलाई को शहरी क्षेत्रों में विशेष शिविर लगेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में 96% से अधिक मतदाताओं को फॉर्म बांटे जा चुके हैं और आधे का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों

0: और केंद्र शासित प्रदेशों को एक बड़ा निर्देश जारी किया है। अदालत ने वृद्ध और असाध्य बीमारियों से पीड़ित कैदियों की समय से पहले या शीघ्र रिहाई के लिए एक व्यापक नीति बनाने और उन्हें लागू करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में देश भर में एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारों को 3 महीने के भीतर नीति अधिसूचित करने की समय सीमा तय की है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही विभागीय समीक्षा बैठकों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इन बैठकों को महज दिखावा बताते हुए आरोप लगाया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए मिले जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट यानी कि DMFT फंड का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है।
1: अरंडा को देखना चाहिए, वहां पर किस प्रकार से गांव के लोग रहते हैं, उनके जीवन कैसा है। लेकिन जहां से आयरन ओर निकाले जाते हैं, मैग्नीज निकाले जाते हैं, उस क्षेत्र की हालत यानी वहां के लोगों के जीवन में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया। आज भी वहां के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
0: इधर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि यह सरकार प्रचंड जनादेश से बनी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने तथा कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ही यह समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
2: बीजेपी को संतुष्ट करने के लिए हम लोग सरकार थोड़े ही बनाए हैं। सरकार बनी है जनादेश से और हम उन उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। हम नियुक्तियां करते हैं, हम रोजगार देते हैं, हम MOU करके उसे धरातल पर उतारते हैं। विभिन्न विभागों में जो भी कमियां होंगी, त्रुटियां होंगी, उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। समीक्षा बैठक तो उसी की कड़ी है।
0: नई दिल्ली के भारत टेक्स 2026 में झारखंड पवेलियन के बांस स्टील उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के आकर्षण का केंद्र बने हैं। भारत मंडपम में आयोजित वैश्विक प्रदर्शनी में बहरागोड़ा के अंजनेया बांस क्लस्टर द्वारा निर्मित आधुनिक बोतलें और मग धूम मचा रहे हैं। लेजर कटिंग तकनीक से बने ये उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं। कोडरमा पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 वाहनों से 247 लीटर विदेशी शराब और 30 लीटर बियर बरामद की है। गुप्त बॉक्स में छिपाकर बिहार से लाई जा रही इस शराब की कीमत करीब 1,75,000 रुपए है। मौके से बिहार निवासी 4 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातीय क्षेत्र के कारण राज्य भर में मॉनसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसके प्रभाव से रांची, खूंटी, रामगढ़, लातेहार और बोकारो सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 72 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। राज्य में स्कूली खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो रहा है। इसके तहत पहली प्रतियोगिता 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट कल से 21 जुलाई तक राज्य के खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में खेली जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य भर में आस्था और पारंपरिक उल्लास के साथ निकाली जा रही है भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। रांची में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने रथ खींचकर किया ऐतिहासिक महोत्सव का शुभारंभ। झारखंड के रेल यात्रियों को कल मिलेगी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिस्का, मुरी और विमलगढ़ रेलवे स्टेशनों का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। राज्य में SIR अभियान तेज, शहरी और युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए 18 और 20 जुलाई को सभी शहरी केंद्रों पर लगेंगे विशेष शिविर। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जेलों से बीमार और बुजुर्ग कैदियों की समय से पहले रिहाई की व्यापक नीति बनाने का दिया निर्देश। और नई दिल्ली के भारत टेक्स में झारखंड पवेलियन की धूम, आधुनिक बांस स्टील उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए बने मुख्य आकर्षण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है जिले में आजकल।
4: तो थे जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पाकुड़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता।
1: पाकुड़ जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र लिट्टीपाड़ा, महेशपुर एवं पाकुड़ के पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराए जाने को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण का काम जोर शोर से चल रहा है। त्रुटि रहित विशेष गहन पुनरीक्षण में बूथ लेवल पदाधिकारी, राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट, वॉलंटियर के साथ साथ प्रशासन से जुड़े अधिकारी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। इस पर बात की उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार लाल ने।
2: उनको अपने कॉपर टू केवल जो कुछ कॉलम है भरकर और हस्ताक्षर करके वापस कर रहे हैं। मुख्य मतदाता 2003 से हमारे पैरेंटल भूमि है वो मैपिंग की जा चुकी है और प्रथम चरण में हम लोग उन मतदाताओं से तुरंत निवेशन फॉर्म लेंगे, इसमें भी दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। जहां पर कुछ भी मिसिंग गैप है उनके लिए सेकेंड चरण में दस्तावेजों के साथ ये जाएंगे और उन दवा पर की आगे भी प्राप्त किए जाएंगे।
1: सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने, यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला परिवहन विभाग इन दिनों जागरूकता अभियान चला रहा है। अभियान के दौरान परिवहन नियमों की जानकारी देने के अलावे दुपहिया वाहन चालकों के बीच हेलमेट भी बांटे जा रहे हैं। इस पर बात की जिला परिवहन पदाधिकारी मुजाहिद अंसारी ने।
3: नियमित हम लोगों का प्रयास रहता है कि जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसी को लेकर के आज अडानी ट्रांसमिशन के द्वारा जो है सड़क सुरक्षा जागरूकता का रिक्वेस्ट किया गया था हम लोगों के द्वारा। जो भी लोग बिना हेलमेट चल रहे हैं उनको हिदायत देते हुए हेलमेट प्रदान किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि आप अपनी जान जोखिम में न डालें।
1: अध्यक्ष जूली कृष्णमुनि हेमम की अध्यक्षता में जिला परिषद की हुई बैठक में ग्रामीण इलाकों में पानी बिजली की समस्याओं को दूर करने सहित विकास कार्यों को गति देने पर चर्चा हुई। इस पर बात की जिला परिषद उपाध्यक्ष अशोक कुमार भगत ने।
4: पानी और बिजली के लिए सख्त निर्देश दिया गया, इस तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इस स्तर के एक साल से जिला परिषद की विकास योजना रुकी हुई थी, बहुत जल्द योजना का कार्य प्रारंभ कर दिया। खासकर हमारे जिला परिषद कार्यालय के सामने जो गंदगी पड़ा हुआ उसके लिए मैंने सीडब्ल्यूडी, एनएच और डीबीआर सबको हमने कहा कि उसको
1: काम दिलाने के बहाने दिल्ली ले जाई गई 4 नाबालिग युवतियों को जिला बाल कल्याण समिति ने उनके परिजनों को सौंपा है। इस पर बात की जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य विनोद कुमार प्रमाणिक ने।
5: इन लोगों को काम कराने के लिए कुछ दलाल के द्वारा जो है पंजाब ले जाया गया था और वहां से जो है लोग जो है से भाग करके निकल के अपना घर के लिए गाड़ी पकड़ी थी, घर के घर में वो बॉम्बे पहुंच गई जहां पर जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो इसको रेस्क्यू किया गया। तो जानकारी मिली तो हम यहाँ से पुलिस भेजा गया और उसके बाद बच्चे को यहाँ पहुंचाया गया जिसको आज हम लोग इनके गार्जियन को देंगे ताकि इसे बच्चे जो पुनर्वास हो सके।
1: झारखंड पुलिस एसोसिएशन पाकुड़ शाखा के हुए चुनाव में राम आशीष सिंह अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। इस पर बात की निर्वाचित अध्यक्ष राम आशीष सिंह ने।
6: हमारा जो सब सदस्य हमको जो अध्यक्ष पद में जिताए हैं उनका कल्याण का काम हम करेंगे, जितना हो सकेगा अपना जान लगा देंगे अपने समाज के कल्याण और वरीय प्राधिकारी के पास इन लोगों का समस्या को सिस्टमेटिक ढंग से रखेंगे और निदान कराने का कोशिश।
1: जिले में लगातार हुई बारिश ने किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है, वर्षा के बाद खेतों की जुताई में जुट गए हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़।
0: अभी आप सुन रहे थे पाकुड़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं फिर 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में इसमें शाम के 7:16 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। झनकार कार्यक्रम का लीजिए पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज में फिल्म मिस्टर इंडिया का।

ऑल टाइम हिट्स। अभी आप सुन रहे थे हमारे कार्यक्रम, माफ कीजिएगा झिमटार। अभी आप सुन रहे थे हमारे कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:30 हो चुके हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

अब आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। शाम के 7:31 हो चुके हैं। पेशे खदमत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। लीजिए प्रोग्राम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आशिकी फिल्म से आवाजें हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की।

कुमार सानू और साधना को आपने सुना फिल्म दामिनी ने। आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स फिल्म हजारीबाग से। लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं कुमार सानू की आवाज में, माशोक फिल्म का।

कयामत से कयामत तक इस फिल्म का गीत आपने सुना। आवाजें थी अलका याग्निक और उदित नारायण की। लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत, हम आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर और अनवर की आवाज में फिल्म हीर राजा का ये गीत।

ऑल टाइम हिट्स अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 8 बज चुके हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आप ही के खतों पर पवनी फिल्माशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात के 8 बज चुके हैं। पेशे खदमत है आप ही के खातों पर मबनी फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपके चाहत प्रोग्राम सुनने वालों को अली शब्बीर का नमस्कार। आइए आगाज करते हैं फिल्म नूरी के इस गीत से, जिसमें आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने। और इस गीत को सुनने के लिए खत लिखा है चेपा कला बड़का गांव से बाबूलाल ठाकुर, सबिया ठाकुर, तिलेश्वरी भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश, आदर्श, अनुराधा, रुक्मणी।

प्रियंका और दीपिका ने, और ये खता है नया टोला भिकनपुर भागलपुर से। आप हैं गणेश पासवान, सुधा पासवान, पूजा पासवान, विकास पासवान, नितिन पासवान और मनोज पासवान। गोलपार रामगढ़ से आप हैं शहनवाज हुसैन, अकबर हुसैन, अनवर हुसैन, तलत यास्मीन, रिफत यास्मीन, फरहत यास्मीन, अशरफ हुसैन और बिस्मिल्ला खान। आप हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। आप सबने लता मंगेशकर और मुकेश नितिन मुकेश को सुनने के लिए खत लिखा है फिल्म नूरी के लिए। लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा।

और लीजिए अगला गीत हमने लिया है फिल्म एक दूजे के लिए का, आवाज़ है लता मंगेशकर और एस पी बाला सुब्रमण्यम की। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं पचमंदिर रोड हजारीबाग से नीलोफर परवीन आरजू, हबीबा खातून आरजू, केकिशा परवीन आरजू, इरफान अहमद आरजू, शबाना परवीन आरजू, फिरोज अहमद आरजू और शमा परवीन आरजू। आप हैं चंदा चौक अंदराठी से, अंदराठी मधुबनी बिहार से शोमीकांत झा, हेमलता, मनोज, लकी, मोहित, सरोज, स्तुति सज्जन, नैतिक सज्जन, सोनाक्षी सज्जन, अर्चना, विवेक और मास्टर एसके सज्जन। और ये खता है पटेल नगर मलोट पंजाब से, आप हैं रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी जजौरिया, गगन दीप जजौरिया, बेबी आरजू जजौरिया और आप हैं सिमसिम बनासो दरियापुर महाराष्ट्र से, राजेश चौहान, संदीप चौहान, किशोर चौहान और सचिन चौहान। आप सबने एक दूजे के लिए फिल्म का गीत सुनने के लिए खत लिखा है। लीजिए आप सब सुनिए अपने पसंद का ये गीत।

सुन रहे हैं आप ही के खतों पर मबनी फरमाशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत अली शब्बीर के साथ। प्रोग्राम के बाकी नगमे हम आपको सुनाएंगे छोटे से अंतराल के बाद।

आइए लीजिए, हम हाजिर आ गए आपकी फरमाइशी फिल्मों की दुनिया का खजाना लेकर एक बार फिर। और यह है प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जीवन मृत्यु का ये गीत, जिसे सुनने के लिए खत लिखा है मालीटोला खिरगांव से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास भगत, जितेंद्र भगत, रितेश भगत, रोहित भगत, ऋषि और राहुल। यहीं से आप हैं कल्लू मालाकार, आशा देवी, अरविंद मालाकार, अनिकेत मालाकार, आदर्श मालाकार, अमन और सुरेश।

यह खता है हजारीबाग पतरातू से आपने बेसिल खल को मधु रितु रचना मीटू श्वेता पल्लवी रोहित प्रवीण नदीम मनीषा और समस्त परिवार आप हैं जीटी रोड बरही से सीताराम मालाकार वासुदेव मालाकार इंदु देवी कैलाश भगत पूनम कुमारी नूतन कुमारी कुसुम और आर्यन आप सुने मोहम्मद रफी लता मंगेशकर को फिल्म जीवन मृत्यु में सुनने के लिए खत लिखा है लीजिए आप सुनिए अपने पसंद का ये गीत

और ये लीजिए अगला खत है इंद्रपुरी चौक से, आप हैं दिलीप ठाकुर, अरविंद ठाकुर, सतीश, मनीष और मुकेश, यहीं से आप हैं कयूम, अरशद, हैदर, अनवर, नौशाद और दिलकश। ये खत है पिलावल हजारीबाग साहब हैं, शौकत, मुकब्बिर, सोनू, मोनू, पम्मी और ये खत आया है रूमी हजारीबाग साहब हैं, शुक्रुल्ला, नजराना, दूरदाना, महापारा और रेशमा। आप सब ने मुकेश और लता मंगेशकर को फिल्म कभी कभी में सुनने के लिए खत लिखा है। लीजिए आप सब सुनिए अपने पसंद का ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म भीगी पलके का गीत लेकर हम आए आप सबकी फरमाइश पर। आप हैं गोविंदपुर धनबाद से शराफत हुसैन अंसारी, बेगम रिहाना, परवेज अशरफ और हसन इमाम। आप हैं भुरकुंडा से रानी, दिया, प्रकाश, शोमित, रूपा, संध्या, मृदुला और बहुत सारे दोस्त। जामा मस्जिद रोड रामगढ़ से आप हैं शहादत हुसैन, करामत हुसैन, अकबर हुसैन, सलामत हुसैन, तलत यास्मीन, रिफत यास्मीन, फरहत यास्मीन और बिस्मिल्लाह खान। आप हैं औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। आप सबने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म भीगी पलके में सुनने के लिए खत लिखा है। लीजिए आप सब सुनिए अपने पसंद का ये गीत।

अगला गीत हम लेकर आए हैं फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, और इस गीत को सुनने के लिए खत लिखा है सौदागर मोहल्ला रामगढ़ से महबूब आलम, शबनम नूरी, मकसूद आलम, पाकीज़ा बेगम, महफूज आलम और शहनाज नूरी ने। आप हैं ओल्ड नेशनल ग्रुप मगनपुर से अमजद अली और अब्बास आलम। लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

प्यासा सावन, लीजिए आखिर में हम लेकर आए हैं इसी फिल्म का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की, सुनने की ख्वाहिशमंद है। नाजमन दिल महजौल सीताबड़ी बिहार से, अकरम हुसैन, इशरत अकरम, अरहान, हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा नाज, शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख। आप हैं कोकिल द्वारा औरई जिला मुजफ्फरपुर से, मोहम्मद फैसल शेख, नुजहत जहां नाज और अमजद शेख। और ये खत आया है छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्त रेंगी से, आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा और दीपक कुमार वर्मा। आप सबने मोहम्मद रफ़ी और माफ़ कीजिएगा, आप सबने लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर को फिल्म प्यासा सावन में सुनने के लिए खत लिखा है। लीजिए आप सब सुनिए अपने पसंद का ये नगमा। और दिए प्रोग्राम से अली शब्बीर को इजाज़त, नमस्कार।

आपकी चाहत अभी आप सुन रहे थे हमारे ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय रात के 8:45 होने को है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या का आज का अंक। रात 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज 8:09, उसके बाद आप सुनेंगे स्पॉटलाइट। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी।

0: और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनों के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में

0: वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने ये पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लैटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुकेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देशभर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
2: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमीयतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
3: जगबंधु हे गोसाई।
4: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रथ में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
3: जगबंधु है गोसाई।
1: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
5: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत

0: बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
1: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 2 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. India achieves major milestone bringing over 1 billion citizens under social protection framework. Prime Minister Narendra Modi to flag off country's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana tomorrow. Direct commercial flight begins between Daman and New Delhi, marking new era of air connectivity. World-renowned Rath Yatra of Lord Jagannath in Odisha's Puri draws lakhs of devotees. US expands strikes into northern Iran, disables ship trying to break naval blockade, Tehran retaliates. 2 Indian men boxers clinch gold while 3 bag silver at Asian Under-19 and Under-23 championships in Jakarta. And in men's cricket, 2nd ODI between Indian host England underway in Cardiff. And now the news in detail. India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026. Bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हुआ था। कैटरीना हांगकांग में जन्मी हैं और उनका परिवार दुनिया के अलग अलग देशों में रहता आया है। आखिरकार उनका परिवार लंदन में बस गया, जहां कैटरीना ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद शुरू हुई

एक फैशन शो में कैटरीना कैफ रैंप पर वॉक कर रही थी और उन पर नजर पड़ी फिल्मकार कैजाद गुस्ताद की, जो उन दिनों अपनी फिल्म बूम के लिए एक अभिनेत्री की तलाश में थे। बस यहां से शुरू हुआ कैटरीना कैफ का करियर। फिल्म बूम 2003 में आई थी। 2004 में कैटरीना कैफ ने एक तेलुगु फिल्म की मल्लीश्वरी, इस फिल्म ने खूब कामयाबी हासिल की और इसके बाद साल 2005 कैटरीना कैफ को मिली अपनी पहली कामयाबी। ये फिल्म थी मैंने प्यार क्यों किया।

कैटरीना कैफ के लिए अभिनय का ये रास्ता बहुत आसान नहीं रहा। हिंदी से बहुत ज्यादा वाकिफ वो थी नहीं, परवरिश लंदन में हुई थी, उच्चारण में बहुत ज्यादा ब्रिटिश लहजा था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैटरीना की शुरुआती फिल्मों में उनके संवादों की डबिंग की जाती थी, लेकिन कैटरीना ने बहुत मेहनत की और अपने रोल्स में जान।

0: तू ही करा।
1: साल 2006 में कैटरीना कैफ ने अक्षय कुमार के साथ पहली बार काम किया। ये फिल्म थी निर्देशक राज कंवर की फिल्म हमको दीवाना कर गए। फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन आगे चलकर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आए, जैसे साल 2007 में नमस्ते लंदन,

इसके बाद फिल्म अपनी में कैटरीना कैफ एक सपोर्टिंग रोल में नजर आईं। इस फिल्म में वो डॉक्टर बनी थी। डेविड धवन की फिल्म आई पार्टनर, जिसमें कैटरीना कैफ का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था। पल

साल 2009 में कैटरीना कैफ ने कबीर खान की फिल्म न्यूयॉर्क में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ थे जॉन अब्राहम और नील नितिन मुकेश।

इसके बाद कैटरीना कैफ की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म आई, राजकुमार संतोषी की अजब प्रेम की गजब कहानी। ये फिल्म उस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में से एक बन गई।

साल 2010 में एक बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म आई जिसके न चलने का कैटरीना कैफ को भी दुख है और इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों को भी। ये फिल्म थी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की अभिनय वाली 30 मार खां। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आईं जोया अख्तर की फिल्म में। इस फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।

is wrong. Let me do it, do it. साल 2012 में कैटरीना कैफ ने फिल्म अग्निपथ में काम किया और इस फिल्म में ये गाना उस साल खूब खूब

ये वो दौर था जब कैटरीना कैफ जो भी फिल्म करती वो कामयाबी की ऊंचाइयों को छूती। साल 2013 कैटरीना कैफ के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस साल आमिर खान के साथ वो नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म धूम 3 में।

साल 2016 में अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर में कैटरीना कैफ ने काम किया। यहाँ आपको बता दें, ये फिल्म चार्ल्स डिकिंस के मशहूर नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर आधारित थी। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आईं सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म बार बार देखो में।

अभिनेत्री कैटरीना कैफ की अभिनय यात्रा जारी है। वो नजर आईं साल 2017 में अली अब्बास जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है में। इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम था जोया सिंह राठौड़। इसी साल आई वेलकम टू न्यूयॉर्क। साल 2018 में कैटरीना कैफ नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में, जिसमें उनका किरदार था

साल 2018 में ही आनंद रॉय की फिल्म में नजर आई वो फिल्म थी जीरो। इस फिल्म में उनके हीरो थे शाहरुख खान। 2019 में सलमान खान के साथ नजर आई कैटरीना कैफ अली अब्बास जफर की फिल्म भारत में।

0: ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था अभिनेत्री कैटरीना कैफ पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर।

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 10 बज चुके हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा।

ये आकाशवाणी का हवा विभाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात के 10:01 हो रहे हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम रजनीगंधा। प्रोग्राम का पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म आप तो ऐसे न थे का ये गीत।

शोर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें थी मुकेश और लता मंगेशकर की। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीगंधा एफएम हजारीबाग से अली शब्बीर के साथ। प्रोग्राम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं रजिया सुल्तान फिल्म का, आवाज है लता मंगेशकर की।

सलमा आका को आपने सुना फिल्म निगाह में, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा एफएम भाषा दिवस से। लीजिए प्रोग्राम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर को फिल्म हमराज में।

ब्रज निबंधा। अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर।

ये आकाशवाणी का हवाई वाह केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 10:31 हो रहे हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम आज के फनकार। आज के फनकार प्रोग्राम में हमने शामिल किया है पार्श्व गायिका हेमलता को। लीजिए सुनिए उनका गाया हुआ फिल्म अखियों के झरों को से कब ये नगमा।

आप तो ऐसे नहीं थे फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के फनकार एफएम फजाली बाग से। आज के फनकार में हम आपको सुना रहे हैं हेमलता के गाए हुए कुछ चुनिंदा नगमे। ये लीजिए यह प्रोग्राम के अगली पेशकश फिल्म नदिया के पार से।

आप सुन रहे हैं हिमलता को, कार्यक्रम है आज के फनकार। ये लीजिए प्रोग्राम के आखिर में आपको सुना रहे हैं फिल्म नैया का ये गीत। आप रहिए इस नगमे का लुत्फ और दीजिए कार्यक्रम से अली शब्बीर को इजाजत। शब्बा खैर।

आज के फनकार अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में समय रात के 11 बजने को है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन